ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये है आकाशवाणी उदयपुर, सवेरे के 6:05। आइए करते हैं वंदना।

ईश्वर से पहले इंसान की सेवा ही बनाती है इंसान को महान। नफरत को मोहब्बत में बदलने से मिलता है प्रभु चरणों में स्थान।

भक्ति प्यास है। जब धरती पर भीषण गर्मी पड़ती है तब बादल आकर बरस कर प्यास बुझाते हैं धरती की। उसी प्रकार जब भीतर विरह की अग्नि जलेगी तभी प्रभु की करुणा बरसेगी।

वंदना, अभी आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:35। आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं हमारे आज प्रसारित और रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से, यानी कि कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर में यानी कि 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की 92 कड़ी। संगीत होगा सतीश भाटिया का। 7 बजे सदाबहार नगमे आप सुनेंगे और 6:50 पर खेती में आज मई माह के कृषि कार्य, इस बारे में आप सुनेंगे।

7:45 पर सुगम संगीत आप सुनेंगे, 8 बजे और 8:30 पर होगा नमस्कार उदयपुर। आज का दिन होगा ग्रीन एंड गेटवे गुरुवार, इसमें प्रातः ब्रीफ में आप सुनेंगे इस गर्मी एक श्रोता एक पौधा अभियान, वी डी सावरकर जयंती और स्थानीय खबरों आपको बताएंगे, साथ ही साथ इको टॉक करेंगे। यात्रा संवाद में आज हम आपको जानकारी देंगे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे शीर्षक गीत, 11 बजे शास्त्रीय संगीत होगा, 11:30 पर सुगम संगीत, 12 बजे फिल्म संगीत और दोपहर 1:05 पर महिला बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सहेलियारी पाड़ी, जिसमें होगी विचार वाली बात, सामाजिक जागरूकता पर राजस्थानी लोकगीत आपको सुनवाएंगे, साथ ही साथ बातचीत करेंगे ऑनलाइन शिकायत प्रणाली पर, जानकारी देंगे उद्योग के बारे में, आज होगा उद्योग अगरबत्ती उद्योग, और इसके साथ ही गांव में आजकल पर्यटन चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको जानकारी देंगे।

1:45 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे, साथ ही साथ होगी विकास चर्चा। 2:30 पर कृषि जगत प्रोग्राम महिला और पुरुष किसान भाई सुनेंगे, और साथ ही साथ 5 बजे युवा श्रोताओं का प्रोग्राम होगा युववाणी। शाम 6:05 पर फिल्म संगीत, 6:40 पर जिले की चिट्ठी प्रसारित होगी जयपुर से। 7 बजे किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और घर, चौपाल री बात होगी, एग्रोमेंट एडवाइजरी होगी, साथ ही साथ जानकारी आपको देंगे पोषण आहार जागरूकता पर। रात 8 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे, 9:15 पर सुगम संगीत और 9:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा। रात 10 बजे प्रांतीय मासिक नाटक श्रृंखला का नाटक होगा और 10:30 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे हमारे केंद्र से। ये थे हमारे कार्यक्रम आज प्रसारित और रिले होने वाले। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:40 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का है, इसकी 92वीं कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे, संगीत सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:50। किसान भाई बहन अब सुनेंगे कार्यक्रम खेती में आज।

राम राम किसान भाया, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाया ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाया, अपना कार्यक्रम भी टेम भी और मुँह आयो आपने जानकारी देवरा वास्ते। तो आज रा कार्यक्रम में आप ही जानकारी देवा कि गंवारी कटाई का केड़े है जो आपने खेत में अवशेष जो वंचे है तो वणी को आप ही कई इस्तेमाल करना चाहवा, वणी को कई उपयोग करना चाहवा। क्योंकि ज़्यादातर किसान जो कई करे है कि बच्चों देखो जो अवशेष है वणने खेत रा महीने जले ही देवे। तो अणी का और भी कई उपाय है, यह सब जानकारी आज अपना कार्यक्रम में दे रूँ सा। तो बात यह है कि गंवारी कटाई का केड़े अपना बच्चा दिखा अवशेष जिन्हें कटे नरवई केवे कटे भूसा केवे, तो वणी ने कही है कि जलावा के बजाय वणा ने उच्च गुणवत्ता वाली खाद बनावा को काम भी कर सका जो अपने मिट्टी की उर्वरकता और पर्यावरण दोनों वास्ते फायदेमंद है। अब गंवा के अवशेष के बाद में जो दी खाद बनावा को कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रभावी विधियां है, तो अणी की जानकारी दे रहा सा। तो बात यह है कि पहली विधि है वेस्ट डिकम्पोजर। यह सबों तेज और आधुनिक तरीका वाली प्रक्रिया है। और अब अण की प्रक्रिया कही रहे कि देखो 200 लीटर पानी रे महीने 2 किलो गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर की एक शीशी घोल देनी चाहवे। अण के एक हफ्ता रे केड़े अण छोड़ देना चाहिए एक हफ्ता वास्ते। और उनको उपयोग पचकई करना है कि खेत में मौजूद गंवा का जो अवशेष है वणा ने अपी गोल कलारे वन पे छिड़काव करा, हल्की पाणत करा हाँ, और अणको उपयोग अणी तरह कर सका। और पची को परिणाम कई वेगा 30-40 दना के केड़े अवशेष जो है वो हड़ियो दिखो जो है बेहतरीन खाद में जो है बदल जाएगा। तो केवार मतलब जो खेत में अवशेष हो वो खाद बन जावा 40 दना रहा महीने महीने। अब इनको दूजो फायदो कही कि गड्ढा विधि। अब यह विधि कही है कि अण में कही कि अवशेष ने अपी खेतों बाण निकाल जो है खाद बनाओ रो काम कर सका। अब गड्ढा विधि किस तरह तैयार कर सका, गड्ढा विधि तैयार करो और काम है कि देखो कि 10 फीट लंबो और 6 फीट चौड़ो जो और 3 फीट गहरो अपने गड्ढो खोदनो है। परता बनावनी वन में जनों सबों पहली कही है कि नीचे 6-8 इंच की गंवारी के अवशेष जो है वन की परत बिछावनी है। इनके ऊपर अपने गोबर को घोल डालना है जिसमें गोबर और पानी दो ही व्यवय। पचे कही है कि मिट्टी की एक पतली परत अपने डालनी है। आणी काम में पचे देखो दोहराव करना, आणी से तरह अपने गड्ढा का ऊपर और तक जो इन्हें भरनो है। और अंत में कही है कि अन्ना आपने मिट्टी और गोबर पे अपने बनने लीप देनो है, तो मतलब वो गड्ढो पूरी तरह भरी जाए। पचे नमी री बात करो तो देखो बीच बीच में आप पानी को छिड़काव करता रहा, नमी वणी दी की रहेगा वन में 3-4 महीना के बाद में यदि वन में देखो कि सड़न वह यदि एक खाद अपने बेहतर तैयार वही सके है। अणियों कही है कि देखो अपने बेहतर खाद मिल सके है। और पचे देखो कि इन सीटू प्रबंधन खेत रा महीने खाद बनाओ की यह एक और विधि है। अणि में कही है कि हैप्पी सीडर मतलब सुपर सीडर जिन्हें आप कही सका मशीन की मददों है अवशेष ने बिना जलाए सीधा अगली फसल की बुआई का वास्ते काम में ले सका। अब अण में देखो मल्चिंग को काम भी वे अवशेष खेत की सतह पे एक सुरक्षा कवच को काम करे है। जणियों कही है कि यो देखो मिट्टी में नमी बनी दिख रहे वे नमी ने बचाव और काम करे, धीरे धीरे जो सड़न वो है खाद में बदल जावे। अब एक ही और दूसरी विधि कई बताई मिली है कि यूरिया को उपयोग। यदि आप ही अवशेष ने जल्दी सड़ानो चाहवा तो प्रति एकड़ लगभग 20-25 किलो यूरिया के ने आप ही छिड़काव करनो चाहवे। वणियों कही है कि अवशेष जो है वह जो है वणा को पे छिड़काव वेवर पचा पे हल्की पाणत करा हाँ, तो वणियों कही है कि नाइट्रोजन मिल जावे और सूक्ष्म जीवी तेजियों जो है सक्रिय वेवे और अवशेष जल्दी गल जावे। तो यह भी एक प्रक्रिया वेगी। अब अण का लाभ की बात करो तो देखो कि पोषक तत्व की वापसी, मिट्टी ने प्रचुर मात्रा महीने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम या वाली जो है वापस मिलवा लाग जावे। और मिट्टी की संरचना की बात करो तो देखो अपने जमीन रा महीने जल धारण क्षमता जो है वन में बढ़ोतरी वे, मतलब अपने पानी जो आप पाणत को देवा तो वो ज़्यादा समय तक जमीन रा महीने टिको दिखो रहे वन की नमी वणी दिखी रहे। अब और एक फायदा री बात करें तो देखो मित्र कीट को

संरक्षण में वेवे। मित्र कीट कशा वे अपना खेत में फसल रा लारे, कुछ जीव कुछ कीट जो है वे अपने फसल के लिए फायदेमंद वे, जन में देखो एक वे केंचुआ या पचे फायदेमंद बैक्टीरिया जो है वणा की संख्या में जो है तेजी बढ़ोतरी वे सके। और इनको लाभ जो देखो प्रदूषण बचाव रो, हवा की गुणवत्ता बनी दिखी रेवे और अपने मिट्टी की जो है ऊपरी परत जो है वा कई के अपने देखो आग नष्ट नहीं वेवे। आग लगावा आपी तो विकों को एक ऊपरी परत नष्ट हो जावे, और जबकि आपी अगर आग नहीं लगावा और वणी अवशेष ने आपी खाद में बदल रहे हाँ, तो जो आग के कारण जो ऊपरी परत नष्ट वेवा को जो खतरो है वणियों आपी वंचित के रह सका, अपनो खेत वंचित के रह सके और विको फायदो अपन अगली फसल पे मिले है। और इनमें सुझावरी बात यह है कि अपना देश रा महीने अपना राजस्थान राज्य रा महीने शुष्क क्षेत्र में नमी बनाए रखवा रा वास्ते यो काम बहुत ही जरूरी है। अंडे वास्ते कही कि अवशेष ने उपचारित करना भी जो काम कर सका और हल्की पाणत अपी जरूर करना चाहवा। तो अणु कई वेगा कि देखो अपनों गंवारी कटाई का केड़े जो अवशेष बचो देखो खेत में है वणी को अपी सदुपयोग कर पा रहा, जबकि कई है कि ज़्यादातर किसान कई करे कि बचे दिखा अवशेष ने जो है जलाई देवे विको नारी आ रहा खतरा भी पैदा हुई जावे। देखो अपने मिट्टी की जो ऊपरी परत है वन ने नुकसान पहुँचे, विका अपना खेत रमाइने जो अपने फायदेमंद जो कीट व्या करे वह जो है नष्ट हो जाए, वे को नुकसान पहुँचे और जो तो नुकसान पहुँचे क्योंकि आपकी कणी भी चीज़ ने जलावा तो वन को जो धुओं निकले तो वो धुओं हानिकारक व्या करे, अपना वातावरण रे वास्ते भी हानिकारक वे, आपी भी खेते कूड़े आवा जावा तो अपने शरीर रे वास्ते भी हानिकारक व्या करे। जबकि अगर आपकी जो अवशेष है गंवार की कटाई के बाद में निकले दिखो अवशेष है वर्ण अभी जो है नष्ट करवा के बजाय जलावा रहा बजाय वर्ण की जो है वर्ण काम में लेवा रो तरीका अपनावा तो जो है कि अपना खेत में विको फायदो मिले और विको फायदो तुरंत नहीं मिले लेकिन आवा वाली जो फसल है वर्ण में जरूर अपने को फायदो देखवाने मिले सा। तो किसान भाई ने कहवा कि अपना जो गवा की कटाई के बाद में यदि अपना खेत खाली पड़िया लगा है तो वणी टाइम पे जो है अपना जो अवशेष पड़ियो दिखो है वणी अवशेष ने जलावणो नहीं है, वणी ने काम में लेवारी सोचनी है, भले आपी वणने खेत रा खेत में राखता दिखाई वणने आपी काम में ले सका और अगर नहीं रखना चाहवा तो विना आपी बाण निकल भी विना खाद में बदल सका। तो अन्य तरह को जो है उपचार आपी करा प्रक्रिया ने अपनावा, देखो थोड़ी मेहनत जरूर लागेगा लेकिन इको फायदा जरूर आपने मिलेगा। तो अपने किसान भाई जो है अणि सब तरीका ने अपनावे तो आपकी खेती रे महीने जो है बेहतर काम कर सका, क्योंकि जमानो जो है वो पाणो अपने पारंपरिक खेती करवारो ही नहीं है, थोड़ी वैज्ञानिक तरीका अपनाओ रो भी है और वैज्ञानिक तरीका यदि अपनावा तो अपने खेती में विको फायदो मिले। आपने जो खेती में व्यवहार नुकसान है प्राकृतिक नुकसान है या पचे कई तरह का नुकसान है विको काफ़ी हद तक अपनों जो वंचाव वे सके, और आपने जो खेती में व्यवहार नुकसान वंचाव है तो अपना आवा वाली जो फसल है वण के पैदावार में जो है बढ़ोतरी वेवे, पैदावार में यदि बढ़ोतरी वेवे तो देखो कि आप मान सका कि आपने जितने जितनी पैदावार प्रति हेक्टर में वेरी वेको और बढ़ोतरी वे जावे, कटे सवाया जो है अपना वह भी वेवे लाग जान कटे जो डेढ़ी पैदावार वेजा। तो अणि हिसाबों कही कि अपने खेत अपनों वही से पानी अपनों वही से जगह अपनी वही से आप ही भी मेहनत करवा वाला वही सा, लेकिन अगर अपना फायदो मल रो है थोड़ी सी प्रक्रिया ने बदलवाऊँ थोड़ी सी मेहनत करवाऊँ तो क्यों नहीं आप ही वो काम करना चाहवा। आप ही वो काम करेंगा तो है कि निश्चित तौर पर अपने जो है पैदावार में बढ़ोतरी वेगा और पैदावार में बढ़ोतरी वेगा तो इको फायदो अपने मिलेगा सा। तो देखो सा किसान भाई या तो भी जानकारी और अभी देखो कार्यक्रम जावारी टाइम वे रही है तो चला सा राम राम सा।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती में आज, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 7 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सर के इस गीत से। इस गीत में आवाज़ है कुमार शानू और साथियों की, अनु मलिक ने इसका संगीत दिया है।

कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ और सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ में गाया, यादों की कसम फिल्म से।

यादों की कसम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम हीरो।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।
9: श्रोताओं, ये गीत प्यार झुकता नहीं फिल्म से है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

प्यार झुकता नहीं इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और अब लीला मजनू का गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। ये आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
1: नहीं।
0: तो फिर गुम
1: अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस।

इसके साथ ही सदाबहार नगमे प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 7:45। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत, और आज इस कार्यक्रम में अदनान सामी के गाए गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाते हैं। यह है कार्यक्रम का

श्रोताओं, अदनान सामी के गाय इस गीत के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार प्रभात, और 8:15 पर होगी मॉर्निंग न्यूज़।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे

0: ढाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप

0: है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को

0: प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली, रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

0: मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है।
1: बिल्कुल, और यही आशा हमेशा हर किसी के मन में जिंदा रहनी चाहिए। आज फिर से एक नए सवेरे के साथ, एक आशा के साथ हम लेकर हाजिर हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ रश्मि
0: और मैं हूँ भगवती लक्षकर।
1: तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और तो भगवती, आज क्या कुछ बताने वाले हो हमारे श्रोताओं को?
0: बिल्कुल, आज जो है ग्रीन और गेट में गुरुवार है, तो हम मॉर्निंग ब्रीफ दे देते हैं कि इस गर्मी एक श्रोता एक पौधा अभियान के बारे में बताएंगे, जयंती वी डी सावरकर की प्रमुख स्थानीय खबरें आपको देंगे, आईपीएल अपडेट आपको कराएंगे।
1: बिल्कुल, और देखिए ग्रीन एंड गेटअवे थर्सडे है, तो आज का पूरा प्रोग्राम हमारा खुली फिजाओं और पर्यावरण के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। हम बात करेंगे इको टॉक के अंतर्गत वेस्ट सेग्रीगेशन का, यानी कचरा पृथक्करण का। उसी के साथ हम आज ट्रेवल टॉक में हमारे श्रोताओं को लेकर जाएंगे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व।
0: और अवेयरनेस पर हम जानकारी देंगे आपको पर्यावरण

0: पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध है।
1: चलिए तो आज मतलब ग्रीन गेटअवे थर्सडे है, तो हम कुछ खुली फिजाओं की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: चलिए, तो खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन कुछ नया ज़रूर लेकर आता है। कुछ लोकल अपडेट्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि आज हम ईद उल अज़हा का त्यौहार मना रहे हैं, जो कि पूरे ज़िले में अदब और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और समर्पण का प्रतीक है आज का दिन। और आज हमारे शहर में तो सुबह 6:15 बजे से लेकर 8:30 बजे तक शहर की विभिन्न मस्जिदों और मुख्य ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई और सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी।
1: बिल्कुल। और इन दिनों चल रहा है अधिक मास, और अधिक मास की एकादशी कल थी। और शहर के श्रीनाथ मंदिर, जगदीश मंदिर, स्थल आश्रम सहित ठाकुर जी के मंदिरों में विविध जो मनोरंजन हुए और दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गंगोकुंड, पिछोला और शहर के जो घाट है वहाँ पर अधिक मास करने वाले व्रतार्थियों ने दीपदान किया।
0: बिल्कुल, देखिए हमारा शहर, हमारा देश ही ऐसा है जहाँ हर धर्म के लिए कोई न कोई आयोजन हर दिन होते हैं और ये सभी त्यौहार हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट

0: लेकर आते हैं। फिलहाल अब मुस्कुराहट लेकर आने वाली है आईपीएल अपडेट। हमारे शहर क्या होने वाला है हमारे मैचेस में, वो हम अपने श्रोताओं को बताने वाले हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन एक गीत
0: बिल्कुल गीत सुनवाते हैं।

चलिए अब बात करते हैं आईपीएल अपडेट की। तो कल के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया है और पहले बैटिंग करके राजस्थान ने 243 रन बनाए और जवाब में हैदराबाद सिर्फ 196 रन पर ऑल आउट हो गई। और आज की अगर हम अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो सुर्खियों में आ रहा है सिक्सर किंग का नाम, जो कि है राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी। कल के मैच में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 12 छक्के शामिल थे भगवती, और इसके साथ ही वैभव के इस सीजन के 65 छक्के

0: चुके हैं और उन्होंने तोड़ दिया है आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का 14 साल पुराना रिकॉर्ड, जो कि था यूनिवर्स बॉस क्रिस गिल के नाम। ऑरेंज कैप पर वैभव सूर्यवंशी ने उस पर हक जमा लिया है 680 रन के साथ और पर्पल कैप है बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार के पास 26 विकेट के साथ।
1: ऑरेंज कैंप में जो है साई सुदर्शन दूसरे नंबर पर है और इधर पर्पल कैप पर कगिसो रवाडा, ये जो है गुजरात टीम के हैं, वो 26 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर।
0: बिल्कुल, और अब हमें इंतज़ार है कल के मैच का, यानी कल यानी 29 मई को क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होने वाला है गुजरात टाइटंस के साथ और ये मैच डिसाइड करेगा कि 31 मई को फाइनल मैच बेंगलुरु के साथ किसका होने वाला है। तो हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस मैच का।

0: और अब जो है आज हम जयंती मना रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर की। ये सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी और दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक दृष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार और ओजस्वी आदि कई जो है इनके कह सकते हैं सिद्ध थे। और उनके इन्हीं गुणों ने महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर इनको लाकर खड़ा कर दिया।
1: बिल्कुल। और अगर उनके प्रमुख योगदान की बात करें, भगवती तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में वह हमेशा सक्रिय रहे। अभिनव भारत नामक संगठन की उन्होंने स्थापना की। लंदन में रहकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, अंडमान की सेलुलर जेल में काला पानी की सजा भी दी गई और वो एक साहित्यकार और विचारक भी थे। तो उनकी रचनाओं की बात करें तो उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा पर लेखन किया और कई देशभक्ति रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधारों पर उनके विचार हमारे जीवन में हमेशा से शामिल है और साहस और संघर्षपूर्ण जीवन से हम हमेशा प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल। उनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गाँव में और उनके पिता जो है दामोदर पंत गाँव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से जाने जाते थे। और जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता राधा बाई का देहांत हो गया था। विनायक दामोदर सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे और उन्होंने जीवन भर हिंदूवादी हिंदुस्तान के लिए कार्य किया और वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में फिर राजनीतिक दल घोषित किया गया और 1943 के बाद दादर मुंबई में रहे। बाद में वे निर्दोष सिद्ध हुए और राजनीति से संन्यास भी लिया।
1: बिल्कुल। देखिए, और सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक भी लिखी। और वाकई में उनके जीवन से हम बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। सावरकर केवल क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक प्रभावशाली लेखक थे। राष्ट्र प्रेम, आत्मबल और जागृति का संदेश उन्होंने हमेशा हमें दिया है और हम उनके विचारों को हमेशा अपने जीवन में शामिल करते हैं।
0: 1905 के बंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी थी और सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग की थी।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ उन्होंने छुआछूत उन्मूलन, अंतरजातीय विवाह और सहभोग यानी सबका साथ खाना को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और हिंदुत्व शब्द को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा के रूप में वो लेकर आए। तो चलिए, आज हम उन्हें नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं।

0: बिल्कुल, दुनिया के सारे सुख पीछे, पहले मेरा देश।
1: बिल्कुल, हमारा देश, हमारी धरती, जहाँ पर हमें हमारे देश की रक्षा करनी है, उसी के साथ हमारे पर्यावरण का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। और अब हम बात करने वाले हैं एक श्रोता एक पौधा अभियान के लिए। इसका मतलब ये है कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, और हम जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं और हमारे समेत, क्योंकि हम भी एक श्रोता हैं, भले ही हम यहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन हम सभी की जिम्मेदारी ये है कि हम सभी अपने जीवन में एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। सिर्फ पौधा लगाएं नहीं, बल्कि उसे अच्छी तरह से सिंचित भी करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पौधा लगा तो ज़रूर देते हैं भगवती, लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल है। आप जो है पहले की बात अगर करें तो आपने देखा होगा कि कहीं नीम की छांव, बरगद का विशाल पेड़, पीपल के नीचे बैठकर लोग घंटों सुकून महसूस करते थे। और आज भी जब कड़ी धूप होती है तो यदा कदा हम पौधे की छांव या पेड़ की छांव तलाशते हैं, और जहां हल्की सी भी अगर छांव है तो वहां जाकर खड़े होते हैं। या आप कभी भी स्टैंड पे खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं या ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप छांव तलाशते हैं।
1: बिल्कुल, हमें कहीं गाड़ी भी खड़ी करनी होती तो हमें लगता है कि कहीं थोड़ी सी छांव मिल जाए तो हम वही खड़ा करें। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम जागरूक हों, वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन के रूप में इसे बनाना, और स्वच्छ वायु और हरित वातावरण को बढ़ावा देना, और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर प्रकृति भी हम उन्हें उपलब्ध करा सकें। और खासकर ये रेडियो के माध्यम से लोगों को पर्यावरण से जोड़ने का एक अभियान है, और इस तरह के अभियानों में शामिल लोग अपने घर, आसपास के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाते हैं। और इस तरह के अभियानों के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे हरियाली राजस्थान मिशन, साथ ही एक पेड़ माँ के नाम। इस तरह के अभियान वक्त समय समय पर चलाए जाते हैं। और अगर आप राजस्थान से हैं तो आप इस तरह के जो पौधे हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं राजस्थान वन विभाग या फिर स्थानीय नगर निगम की नर्सरियों से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरियालो राजस्थान की आधिकारिक पहल के बारे में अधिक जानकारी हरियालो राजस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पौधे आप ज़रूर अपने लेकर आइए और उन्हें अच्छे से पालन पोषण कीजिए, उनका एक
0: फिलहाल
1: बच्चे की
0: ये
1: तरह।
0: अभियान जो है हमारा है, हमारे श्रोताओं का है, तो हम ये कहेंगे कि आप खेत की मेड़ पर, विद्यालय पर, मंदिर पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर पौधा लगा सकते हैं। आप नीम, पीपल, बरगद, करंज, अमलतास, गुलमोहर और फलदार पौधे पर्यावरण के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। एक पौधा न केवल शुद्ध हवा देता है, ठंडी छाया देता है, बल्कि वर्षा में भी सहयोग करता है, मिट्टी का संरक्षण करता है, पक्षियों को आश्रय देता है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य

0: चलिए, तो जहाँ पेड़ पौधों को देखकर हमारा शहर हरियाला सा दिखने लगता है, वहीं हमारे शहर की खूबसूरती के लिए ये भी ज़रूरी है कि शहर साफ सुथरा रहे। तो अब हम बात करने वाले हैं वेस्ट सेग्रीगेशन की, यानी कचरा पृथककरण की। इसकी आवश्यकता इसलिए है भगवती, क्योंकि हम कई बार सारी तरह के कचरों को एक साथ मिक्स कर दिया करते हैं, तो जो यूज़फुल कचरा है, जो खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या रीयूज़ हो सकता है, वो भी वेस्ट हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है गीला कचरा, सूखा कचरा और हानिकारक जो कचरा है उसे अलग अलग रखा जाए, ताकि स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण हमें मिल सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और जब कचरा स्रोत पर ही अलग किया जाता है, यानी कि मूल स्थान पर ही अगर अलग कर दिया जाए, तो कई योग्य वस्तुएं हैं वो अलग हो सकती है और कई गंदी या दूषित जो है दूसरी भी नहीं होगी। इससे प्लास्टिक, कागज़ और कांच की आसानी से पुनर्चक्रण हो जाता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पेड़ और पानी की बचत होती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ देखिए, गीला कचरा जो होता है, सब्जियों के छिलके हो गए, बचा हुआ खाना हो गया या पत्तियां हो गई, ये जैविक होता है। इसे अलग रखने पर इसका उपयोग हम खाद के रूप में कर सकते हैं या फिर बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अस्पतालों से जो मेडिकल वाला जो कचरा निकलता है, या घरों से निकलने वाले खतरनाक जो रसायन होते हैं, जैसे बैटरी हो गई या फिर एक्सपायर्ड दवाइयाँ हो गई या फिर कीटनाशक हो गई, जब हम इसे सामान्य कचरे में मिक्स करते हैं तो भूजल और भी प्रदूषित होता है और भी गंभीर बीमार फैलती हैं।
1: अलग अलग किए गए कचरे का एक बड़ा हिस्सा रिसाइकलिंग या खाद के रूप में उपयोग हो जाता है। इससे शहरों के बाहर कचरे के विशाल ढेर नहीं बनते और जहरीली गैसों व भूजल प्रदूषण से बचाव भी होता है।

बिल्कुल, तो इसीलिए ज़रूरी है कि मिश्रित जो कचरा होता है उसका जो ढेर होता है उसे पहले ही अलग अलग कर लिया जाए, ताकि हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे। यदि नागरिक इसे घर पर ही जो है अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारे घर के बाहर जो है गाड़ी तो आती है गीला और सूखा कचरा के लिए, तो आपको केवल उसमें अलग अलग करके डालना ही है, इतनी सी मेहनत करनी है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा। तो ये हम सभी को इसके लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जो हमारा गीला कचरा है वो हरे डब्बे में डालें, सूखा कचरा नीले डब्बे में, और जो खतरनाक कचरा है उसे लाल या पीले डब्बे में डालें।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण

0: और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों में रेलवे, विद्युत और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। ये आयोजन खरीफ के मौसम की तैयारियों, कृषि उत्पादकता, मौसम की मार से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने सभी नागरिकों से त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी त्योहार का उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने नमाज के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये त्यौहार नागरिकों को मानवता और विशेषकर वंचितों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी परिपत्र जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव कल तक स्वीकार किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन के साथ रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 5 शहरों का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां आम नागरिकों के अलावा पशु पक्षी भी गर्मी और लू से बेहाल नजर आ रहे हैं।
1: भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। बुधवार को इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के चलते रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई। दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोगों को रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। गर्मी के इस दौर में शीतल पेय और खाद्य पदार्थों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: भरतपुर में भी

0: बढ़ती गर्मी की वजह से शहर में अघोषित कर्फ्यू देखा जा रहा है। जैसलमेर में प्रचंड गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती भी जनजीवन को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जिलों में अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी जिलों में आंधी और बारिश से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलना शुरू होगा। कल से 31 मई के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज अंधड़ और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इधर राज्य सरकार भीषण गर्मी में आमजन, विशेषकर राहगीरों और मूक पशु पक्षियों के लिए पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गत दिनों परिपत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टर, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों को ग्रीष्मकाल के दौरान पशु पक्षियों को तेज गर्मी और लू से बचाने तथा उनके लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने कल शासन सचिवालय में पीपल के 11 वृक्षों पर दाने और पानी के लिए परिंडे बांधे। राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में आज CSR कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में होने वाली इस कार्यशाला में औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला के माध्यम से इन इकाइयों और संस्थाओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़ी गतिविधियों में सक्रियता सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। करौली में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पौधरोपण, गौ पूजन और रणगमा ताल पर दीपदान किया गया। जैसलमेर में स्वच्छता संरक्षण और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए और पेयजल स्रोतों की साफ सफाई कराई गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। न्यू चंडीगढ़ में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम अंतिम ओवर में 196 रन पर ही ऑल आउट हो गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में कल दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तो एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ रश्मित
2: और मैं हूँ भगवती लक्षकार।
1: तो चलिए एक खूबसूरत से गीत से फिर से शुरुआत करते हैं।

0: और अब करते हैं ट्रेवल टॉक। और ट्रेवल टॉक में आज हम आपको ले जा रहे हैं राजस्थान के बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा जिलों में फैले रामगढ़ विषधारी अभयारण्य
1: टाइगर रिजर्व पर। बिल्कुल, देखिए ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और ये कुल 1501.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और स्पेशली ये उत्तर पूर्व में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिण में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच में एक महत्वपूर्ण वन्य जीव गलियारे के रूप में कार्य करता है। और इसका मुख्य आकर्षण है कि मेज नदी इस रिजर्व के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपको ढोक के पेड़, तेंदुए, भालू और बाघ यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे।
0: और सबसे बड़ी बात है कि चट्टानी अजगर, रसल वाइपर, सौ स्केल्ड वाइपर और कोबरा जैसी प्रजातियां आपको मिलेगी, इसी वजह से इसका नाम है रामगढ़ विषधारी।
1: बिल्कुल, और ये रिजर्व पर्यटन के भी लिए भी खुला रहता है, जहां आप अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच जैव विविधता का आनंद ले सकते हैं। बूंदी रेलवे स्टेशन यहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां पर आपको तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, नील गाय, चिंकारा, भेड़िया और लक्कड़ बग्घा और मगरमच्छ जैसे जीव मिल जाएंगे।
0: भारतीय गिद्ध की बात करें तो ये यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, पेटेड स्टॉर्क, सारस क्रेन और मोर बड़ी संख्या में आप यहाँ देख सकते हैं। और वन विशेषज्ञों के अनुसार जो है घने जंगल में वन्य जीवों को सुरक्षित आवरण दिलाते हैं, वहाँ

0: के वन।
1: बिल्कुल, और इस टाइगर रिजर्व को बनाने का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान में बाघों के लिए सुरक्षित आवास बढ़ाना और उनके आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्ग को सुरक्षित करना। हाल के वर्षों में यहाँ पर नए बाघों को लाया गया ताकि बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके। ये स्थान प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव फोटोग्राफी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और जंगल सफारी और प्राकृतिक दृश्य यहाँ की खास पहचान है।
0: अन्य टाइगर रिजर्व्स के विपरीत यहाँ मानसून के मौसम में भी बफर जोन में जंगल सफारी की सुविधा उपलब्ध रहती है और जब भी मानसून आए तो आप इस जंगल में जरूर जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए आज हम ग्रीन एंड गेट अवे थर्सडे की बात कर रहे हैं तो इस तरह से खुली वादियों में जाना तो बनता है।

0: बिल्कुल श्रोताओं, पक्षियों की चहकना, पानी की कलकल और जो प्रकृति की आवाज़ें हैं वो मन को शांत करते हैं और अवसाद और चिंता को दूर करने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए जहाँ तक हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं आज, तो भगवती आपने भी देखा होगा कि कई बार आप घर से निकलें किसी काम के लिए और चिलचिलाती हुई धूप हो ना, तो आपका मन अपने आप से चिड़चिड़ा सा होने लग जाता है। और आप ये देखिए, आप सुबह सुबह निकल रहे हैं और

0: खुला वातावरण मन को शांति देता है और प्रकृति के बीच समय बिताने से तनाव, चिंता और अवसाद भी कम होते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखें कि वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। लगातार शोर और गंदी हवा से चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और मानसिक थकान भी हो सकती है।
1: शोर अशांति, यातायात, निर्माण कार्यों में होने वाले लगातार शोर, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन आता है और भीड़भाड़ और कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले लोगों में प्राकृतिक परिवेश में रहने वालों की तुलना में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और देखिए जैसे बढ़ती हुई गर्मी है या फिर कहीं बाढ़ आ गई है या सूखा हो गया है या फिर प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये लोगों के मन में भविष्य के प्रति चिंता जो है वो बढ़ाती है, असुरक्षा की भावना बढ़ाती है और इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट एंजाइटी। तो इसकी वजह से आपको एक एंजाइटी सी होने लगती है कि अब हमारे देश का क्या होगा, अब हमारे शहर का क्या होगा, बाढ़ हो गई। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सीधे आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनती हैं।
1: जिन स्थानों पर पर्यावरण, प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा नहीं आती, वहाँ के निवासियों में मौसमी भावात्मक विकार जो है वो उदासी की संभावना अधिक होती है।
0: बिल्कुल, और देखिए जब भी आपका मन अशांत होना, आप एक काम कीजिए कि अपने आसपास की जगह की साफ सफाई करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी आधी जो एंजाइटी है, आधा जो तनाव है, वो कहीं ना कहीं वो होगा। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मुझे सारी चीज़ों को छोड़कर एक अच्छा सा गाना लगाती हूँ, घर की सफाई करना शुरू कर देती हूँ, तो अपने आप वो जो तनाव है वो थोड़ा सा कम जरूर होता है। तो इसके लिए आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि रोज कुछ समय के लिए प्रकृति के बीच में जाएं, पौधे लगाएं, जो कि आज हमने कहा ही, साथ ही शोर और प्रदूषण से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, खुले वातावरण में योग करें, व्यायाम करें और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में भाग जरूर लें, क्योंकि ये आप बात आप याद रखिएगा कि जब प्रकृति मुस्कुराती है तब आपके मन को सुकून जरूर मिलता है।
1: साथ ही साथ दैनिक रूटीन में कम से कम 20 से 30 मिनट किसी पार्क या हरियाली के बीच टहलने का प्रयास करें। घर में पौधे लगाएं, यदि बाहर जाना संभव न हो तो घर के अंदर इंडोर प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं और परिवेश को व्यवस्थित रखें, इससे भी आपको आत्मिक और मानसिक शांति मिलेगी।
0: बिल्कुल, तो हम तो बस यही कहेंगे कि स्वस्थ पर्यावरण केवल धरती की जरूरत नहीं है बल्कि ये हमारे मन की शांति का आधार भी है। इसलिए आप अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखें और अपने मन को हमेशा खुश रखें।
1: बिल्कुल, इस अवेयरनेस के साथ ही जो है अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो रहा है, तो लेते हैं विदा।
0: बिल्कुल, तो एक दिल को सुकून देने वाला एक अच्छा सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं और लेते हैं आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं थी रश्मि
1: और मैं भगवती लक्षकार।
0: तो दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर, जैसे
2: विवाह,

0: सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से ये मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से

0: उजागर करती हैं।
1: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
0: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं,
6: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का, तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से 3-3 फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
1: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे

0: से बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोहो, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की

0: आई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
1: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
0: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव

0: मानव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 10 बजने को है। लीजिए आप सुनिए शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है पिया।

तो श्रोताओं, आज का शीर्षक गीत है पिया। और अब हम अगर बात करें पिया की, तो पिया केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, अपनापन और आत्मीयता की सबसे मधुर अनुभूति है।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: शुद्धम प्रोग्राम चल रहा है शीर्षक गीत, और हमारे भारतीय संस्कृति की अगर बात करें, साहित्य की बात करें, तो पिया को प्रेमी, पति और प्रियतम के रूप में देखा गया है। ये शब्द मन के गहरे भावों को व्यक्त करता है, और जहां प्रेम में समर्पण, विश्वास और इंतजार की मिठास छिपी होती है।

जब प्रिया के प्रति प्रेम, अपनापन और आत्मीयता की अनुभूति होती है तो उनका दर्द, उनका सुख दुख सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जब किसी के जीवन में प्रिया का स्थान होता है तब हर खुशी विशेष लगने लगती है और हर कठिनाई आसान प्रतीत होती है। लोकगीतों, भजनों और कविताओं में प्रिया का उल्लेख विरह और मिलन दोनों भावों के साथ किया गया है।

भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक परंपरा की बात करें तो पिया शब्द केवल सांसारिक प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। संत, कवियों, भक्तों और सूफी परंपरा में पिया को ईश्वर, गुरु या उस दिव्य शक्ति के रूप में भी देखा गया है जिससे आत्मा मिलन चाहती है।

बिल्कुल श्रोताओं, पिया आत्मा की तड़प का केंद्र है और पिया प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। पिया से मिलना आत्मा का परमात्मा में विलय माना जाता है। पिया तेरी मोहब्बत का असर कुछ ऐसा छाया है, हर धड़कन में बस तू ही तू समाया है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

पिया वह एहसास है जो दूरी में भी अपनेपन का एहसास कराता है। पिया केवल जीवन साथ ही नहीं, मन की शांति और दिल की धड़कन होता है।

पिया तेरी यादों का दीप जलाए बैठे हैं, दिल के हर कोने में तुझे बसाए बैठे हैं। तेरी हंसी की मिठास आज भी बाकी है, हम अपने सपनों को तुझसे सजाए बैठे हैं।

मोरा पिया मुँह से बोलत नाहीं, पिया तेरी मोहब्बत का असर कुछ ऐसा छाया है कि हर धड़कन में बस तू ही तो समाया है। और आज का हमारा शीर्षक था पिया। तो ये अंतिम गीत आपके रेडियो सेट पर, अब दीजिए आपके दोस्त भगवती लक्ष्कर को इस गीत के साथ अनुमति। नमस्कार।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये है आकाशवाणी उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 11:01 हुआ है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आकाशवाणी उदयपुर अब आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल पर ऐप के ज़रिए, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नाम है न्यूज़ ऑन एयर ऐप। OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप हमारे कार्यक्रम कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं वेव्स के माध्यम से। आकाशवाणी उदयपुर से अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सबसे पहले राग पहाड़ी। तबला वादन आप सुनेंगे ओनिंदु चटर्जी का।

0: अभी आपने ये शास्त्रीय संगीत की रचना पहाड़ी धुन पर आधारित सुनी। तबले पर संगत कर रहे थे अनिंदो चटर्जी और बांसुरी पर कर रहे थे रूपक कुलकर्णी। आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत आकाशवाणी उदयपुर से। आइए सुनते हैं एक संदेश और फिर आपको लिए चलेंगे अगली प्रस्तुति की तरफ।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत में बैठक एक पारंपरिक अनौपचारिक और बेहद अंतरंग संगीत सभा को कहा जाता है। बड़े बड़े ऑडिटोरियम स्टेज या सार्वजनिक कॉन्सर्ट से ये बिल्कुल अलग होता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के दरबारों या नवाबों की हवेलियों में संगीत की जो महफिलें सजा करती थी, बैठक उसी का एक आधुनिक रूप है। आइए अब आपको सुनाते हैं यही शास्त्रीय संगीत की रचना बैठक, राग भूपाली पर आधारित। गायक कलाकार हैं कुमार गंधर्व।

अभी आपने सुना तीन ताल पर आधारित राग भूपाली पर यह शास्त्रीय संगीत की रचना, जिसे बैठक कहा जाता है। गायक कलाकार थे कुमार गंधर्व। इस रचना के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी हमें वक्त बता रही है हमारी अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ने का इशारा कर रही है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, चंद गज़ल, और आप तक हम पहुंचाएंगे कुछ ऐसी ही बातें जो दिल को छू जाने वाली हैं।

0: चित्रा सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुनी सुगम संगीत की ये पेशकश।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की इन आवाज़ों में अभी आपने सुनी ये गज़ल। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। इतने चुप चुप खो, कुछ तो बोलो, दिल की कोई गिरह तो खोलो, जो भी बोलो सच सच बोलो, सच में कुछ भी झूठ न खोलो, मिले कहीं अपनों का कांधा, रख के सर जी भर के रोलो, मुझसे मिलके जागना होगा, सोना हो तो पहले सो लो, माना मीर कबीर नहीं हो, खुद को लेकिन कम ना तोलो। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत एक संदेश, और फिर आपको लिए चलेंगे अगली पेशकश की तरफ।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: दादी कौन सा प्लांट है?
6: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
7: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
5: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
7: क्यों?
5: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
7: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

अभी आपने ये गजल सुनी डॉक्टर पामेल मोदी की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए सुनते हैं एक संदेश और फिर इस कार्यक्रम में आखिरी गजल की पेशकश आप तक पहुंचाएंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये गज़ल। कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होगा। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब आपको हम लिए चलेंगे जहां हम आपको रोज़ ले चलते हैं, यानी फिल्मी गीतों के सफ़र पर।

उन संगीत के इस सफर को शुरू करते हैं और हम आपके लिए लेकर आते हैं ये कार्यक्रम 12 से लेकर 1 बजे तक, यानी जिस समय आपको इस 12 बजे की तेज धूप में थकान से महसूस हो, तब आपको ऊर्जावान बनाने के लिए हम ये फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि जिंदगी में गीतों का बहुत बहुत एक बहुत बड़ा स्थान है, जहाँ हम हर तरह के भावों को संगीत से जोड़ सकते हैं, वहीं हम अपने शब्दों को भाव प्रधान बनाने के लिए उसमें संगीत का उपयोग करते हैं, इसलिए ये जो ताना बाना है ये जिंदगी का सिलसिला भी कहता है। आइए आपके इस धूप भरी दोपहरी को थोड़ी सुहानी सी ठंडक दिलाने के लिए गीत सुनवाते हैं, सबसे पहले विशाल ददलानी और अनुषा मणि की आवाज़ में

फिल्म संगीत आपके रेडियो सेट पर अब आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के माध्यम से, और अपने रेडियो सेट पर तो आप सुनते ही हैं। जी हाँ, और हमारी इस आकाशवाणी की कितनी ये गौरवमयी बात है कि 90 वर्ष हो चुके हैं। इस रेडियो का जो सबसे पहला काम है वो है मनोरंजन, और फिल्म संगीत के माध्यम से हम आप तक पहुँच रहे हैं। अब जो गाना आप तक पहुँचाएंगे वो है फिल्म कॉकटेल से। आवाज़ें हैं आरिफ लोहार और हर्षदीप कौर की।

कॉकटेल इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना आरिफ लोहार और हर्षदीप कर की आवाज़ों में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो गाना है इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है, आइए सुने।

0: एजेंट विनोद। इस मौका भी आपने ये गाना सुना अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में। प्रीतम ने इसे संगीत से सजाया और अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा। आइए अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। वे है फिल्म बर्फी से, आवाज है मोहित चौहान की, प्रीतम का संगीत एक बार फिर, और इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
6: दीका,
7: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
8: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
10: आरबीआई कहता है
11: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दी, ये देख कैसे?
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका?
7: हाँ, मेरा फेवरेट कलर।
6: हमेशा शॉपिंग।
8: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: I know na.
10: RBI कहता है,
11: तरो से ही शुरुआत, बनो financially smart.

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लुटेरा का ये गाना। मोनाली ठाकुर की आवाज़ है, अमित त्रिवेदी ने संगीत से इसे सजाया है और गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अभी आपने ये सुना फिल्म नमस्ते लंदन का गाना। आवाज़ें थी जुबीन गर्ग और आलिशा चिनॉय की। हिमेश रेशमिया ने इसे संगीत से सजाया और गीत के वो लिखे जावेद अख्तर ने। फिल्म संगीत के अगले नगमे की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये जो गीत है अब आप सुनेंगे राघव माथुर की आवाज़ में। फिल्म का नाम जब तक है जान।

जब तक है जान, इस फिल्म का आपने ये गाना सुना, आवाज़ ये थी शिल्पा राव और राघव की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय कुछ ही देर में दिन के 1 बजने को है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। भरतपुर में कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की गई। इस दौरान यहां मेला भी लगाया गया। डूंगरपुर में शहर में ईदगाह तक जुलूस निकाला गया और सामूहिक नमाज अदा की गई। इसी तरह भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा में अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र की कोई भी शंका अनसुलझी न रहे और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब सीबीएसई ने देश में ऑन स्क्रीन मार्किंग को लागू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। ये रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देशभर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में 1 से 30 जून तक बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान होटल, ढाबों, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल तथा अस्थायी बस्तियों में रह रहे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए इंडिगो आगामी जुलाई माह से 2 नई उड़ान सेवाएं शुरू करने जा रही है। किशनगढ़ को दिल्ली और नोएडा से जोड़ने वाली इन नई फ्लाइट्स के शुरू होने से अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर और आसपास की बड़ी आबादी को बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा ने बताया कि 1 जुलाई से दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू होगी। ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित की जाएगी। इसके अलावा 2 जुलाई से नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू की जाएगी। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। अजमेर जिले में आज एक स्कॉर्पियो में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। घटना बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव के पास हुई। इस घटना में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी मां, पत्नी और भांजी की मौत हो गई। चारों के शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह जले हुए मिले। हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जाँच जारी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान सूरज आग बरसा रहा है। सभी शहरों में

0: बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा दिन का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। पिलानी में 47, जोधपुर में 46.6, जैसलमेर और चूरू में 46.4, कोटा में 45.4, बाड़मेर, फतेहपुर शेखावाटी में 45, अलवर में 44.8 और लूणकरणसर में 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दोपहर बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। ये वक्त होता है हमारी सभी प्यारी सखियों के लिए उनकी पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें होते हैं विविध जानकारियों के साथ राजस्थानी लोक संगीत। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी।

0: राम राम उपासना भाईसा, राम राम।
1: राम राम अनुश्री भाईसा, राम राम।
0: सहेली अरिबाड़ी कार्यक्रम होनवा वाला हंगला श्रोतावा ने भी आपानो
1: राम राम, राम सा।
0: देखो भाईसा, कार्यक्रम रो जो टेम वेवे आपा लेना वा एक पिटा रो जणी मिने वेवे भात भातरी जानकारियां अंडेलारे वेवे भात भातरा गीत संगीत जनियो आपानी बेना जो है आपने भाई लोग जो है वे आनंद उठाई सके।
1: हाँ,
0: और आज आपा आपने कार्यक्रम में विचार वाली बात मीने सब पहले लेना यहाँ सामाजिक जागरूकता तो अन्य विषय पे आपा आपनी बात ने आगे बढ़ावा सा।
1: हाँ सा, बिल्कुल बढ़ावा सा। भाई देखो, समाज रे महीने हर एक प्राणी ने जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहे कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रह नहीं जा अपने जीवन रो अर्थ समझी सके है। लेकिन केवल समाज में रहना ही पर्याप्त नहीं वे, समाज रे प्रति अपना जी कर्तव्य है और जी जिम्मेदारियां हैं वणा ने समझना भी बहुत जरूरी है सा। और यही समझ सामाजिक जागरूकता कहलावे है सा।
0: बिल्कुल भाईसा, सामाजिक जागरूकता माने आपने आड़े पाड़े री समस्या परिस्थितियाँ लोगों के प्रति सजग और संवेदनशील रहनो, जनाने एक आदमी समझवा लागे कि वनडे छोटा छोटा काम भी समाज पे प्रभाव पड़े तो वो जागरूक नागरिक आप ने कह सका। आज रे समय में देखो सामाजिक जागरूकता री आवश्यकता पहलों ज़्यादा है, क्योंकि अपना समाज में शिक्षा, स्वच्छता, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, जल संरक्षण, साइबर अपराध और सामाजिक भेदभाव जैसी घनी घनी समस्या आज रे तारीख में मौजूद है। और आना समस्या रा समाधान रे वास्ते खाली आपा सरकार पे निर्भर नहीं रह सका, बल्कि एक प्रत्येक नागरिक की भागीदारी वेवे कि वो अना ने दूर करे।
1: हाँ जी, बात है साहब। भाई देखो, एक बात बताऊँ, जिस तरह की अगर आप ही अपने आसपास सफाई रखा और प्लास्टिक रो कम उपयोग करा, पेड़ लगावा और पानी बचावा, तो अपने आसपास अपने जो पर्यावरण है वो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और अन्य तरीकों आप ही पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकांगा। अन्य तरीकों अगर आप ही बाल विवाह, दहेज प्रथा या लैंगिक भेदभाव है असी कुरीतियों रो विरोध करांगा, तो समाज जो है वो एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा और समाज में बुराइयाँ खत्म वेगा। और सोशल मीडिया और इंटरनेट रानी दौर में सामाजिक दो जागरूकता रो महत्व और भी बढ़ गयो है सा। एक और तरफ आप ही देखा कि सोशल मीडिया जो है वह लोगों ने जागरूक करवा रहे प्रभावी माध्यम बनियो थको है, बट दूसरी तरफ यो भी है कि गलत सूचना है या कोई गलत अफवाह आई रही है तो भी सोशल मीडिया का माध्यम बहुत तेजी फैले हैं, तो अणी लिए आपने कणी भी जानकारी ने बिना सत्यापन रे आगे नहीं बढ़ाना चाहे। मतलब कणी भी चीज़ नहीं यूनी कि अपने पास आई है कटु तो आप ही फटाफट फॉरवर्ड कर दा, भी आगे नहीं बढ़ाना है। आपने पहली वंडी वो सही है कि नहीं है अणी बात पूरी जानकारी ले।

0: तो अनुश्री भाई साहब देखो तो बढ़िया सो गीत होना है और हाथे हाथे संदेश भी होना है सा और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और बढ़िया सी जानकारी देवा सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, देखो अबे आप बड़ा डिजिटल साक्षरता रही आड़ी ने, क्योंकि देखो समाज में जनी तरह विकास वही रो है। आप दिन दुनी राज्यों गिनी जन तरह रही प्रगति वही रही है, वणी में कई वीरो है कि आपने डिजिटल साक्षरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: हाँ
1: देखो
0: सर
1: तकनीक री बात करा तो देखो आज आप ऑनलाइन शिकायत प्रणाली री में बात करा तो तकनीक रानी आधुनिक

0: युग में आज लगभग हर काम आप डिजिटल माध्यमों करी रहा, बैंकिंग, शिक्षा, खरीदारी, सरकारी सेवा वाला, साथे साथे अगर आपने शिकायत दर्ज करानी है तो यह प्रक्रिया भी आप ऑनलाइन कर सका। अन्य इस
1: ओके
0: व्यवस्था ने आप ऑनलाइन शिकायत प्रणाली कह सका। हाँ
1: हाँ सा देखो, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली रो मतलब है इंटरनेट रे माध्यमों कणी भी समस्या, असुविधा या शिकायत ने संबंधित विभाग तक पहुँचाणो और वंडी स्थिति री जानकारी प्राप्त करनो। यह व्यवस्था आम नागरिक जो है वणा ने घर बैठा ही अपनी बात प्रशासन और संस्था तक पहुँचावारो एक सरल और प्रभावी माध्यम प्रदान करे है सा। पहला रे टाइम पे देखो अभी बात करा तो कणी भी शिकायत ने दर्ज करावारे लिए सरकारी कार्यालय रा आपने चक्कर लगाना पड़ता। हाँ, बहुत लंबी लंबी लाइना में खड़ो रहना पड़ता हो, तो वणियो कहिए कि समय री भी बर्बादी वेती और कतरी बार असो भी वे तो की सुनवाई नहीं वेती, तो सुनवाई नहीं वे भी बहुत सारी समस्या आई जाती थी। लेकिन ऑनलाइन शिकायत प्रणालियों कही वे कि आनी प्रक्रिया ने आपकी काफ़ी आसानी कर सका। हाँ, अबे कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जनार पास मोबाइल है तो भी कंप्यूटर के माध्यम कुछ ही मिनटा में अपनी शिकायत दर्ज कराई सके है।
0: बिल्कुल वैसा। देखो आज बिजली, पानी, सड़क, नगर निगम, बैंकिंग सेवा, साइबर अपराध, पुलिस विभाग और उपभोक्ता अधिकार रे जुड़ी ते की जितनी भी शिकायत है वे आप ऑनलाइन दर्ज कर सका। कई सरकारी पोर्टल और मोबाइल ऐप नागरिका ने शिकायत दर्ज करवारे वास्ते दस्तावेज अपलोड करवा रहे, शिकायत री स्थिति में ट्रैक करवारी सुविधा प्रदान करे है।
1: हाँ सा देखो, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली रो सबो बड़ो लाभ जो है वो पारदर्शिता है, यानी कि वण में कणी तरह री अपने दुराव छिपाव नी वण में नी वेवे। शिकायत दर्ज वेवारे बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिले है जने कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत री देख सके वण में कि अपनी जो शिकायत है वह कणी स्तर पे चल रही है और अणि भ्रष्टाचार और लापरवाही में कमी आवे है और विभाग जो है वणारी जवाबदेही बढ़ती जावे है।
0: बिल्कुल। और अंडे अलावा यह प्रणाली जो है समय और धन दोया री बचत करे। ग्रामीण क्षेत्र रा लोगा ने अबे छेटी छेटी कार्यालय में जाई बिना आपानी समस्या संबंधित विभाग तक पहुंचाई सके है, और इनमें जो आम नागरिक है वनारो प्रशासन पे विश्वास मजबूत वही रो है।
1: हाँ सर देखो, हालांकि ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जो है वह सामने वाला के लिए बहुत चुनौतियाँ भी देवे है, आज भी बहुत सारा लोग जो है उन्होंने डिजिटल तकनीक की अच्छी तरह जानकारी नहीं वेवे या इंटरनेट की कमी वेवे और साइबर सुरक्षा जुड़िया तक का खतरा भी रहे, तो ये सब चिंता रा विषय है। पर फिर भी कई बार असोवे की शिकायत जो है भी समय पे समाधान नहीं वेवाऊँ लोगों में निराशा भी पैदा करे है, तो आने वास्ते जरूरी है कि सरकार जो है वह डिजिटल साक्षरता ने बढ़ावा देवे और शिकायत निवारण जो प्रक्रिया है वने और ज़्यादा प्रभावी बनावे। हाथे हाथे नागरिका ने भी जिम्मेदारी रे साथे साथे सही और तथ्यपूर्ण शिकायत दर्ज करनी चाहे ताकि अणि व्यवस्था रो दुरुपयोग नहीं वेवे। यानी कहवारो मतलब यो है कि कोई भी शिकायत है तो वह बिल्कुल अगर सही है तो ही शिकायत करनी चाहे, कोई झूठी शिकायत नहीं करनी चाहे।
0: बिल्कुल वैसा। और देखो ऑनलाइन शिकायत प्रणाली लोकतंत्र ने मजबूत बनावारो एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह नागरिका ने अपनी आवाज उठावारो अधिकार देवे, साथे साथे प्रशासक ने भी प्रशासन जो है भी ने भी अधिक जिम्मेदार बनावे। कुल मिले ना पाई यो इस कही सका कि ये तकनीक रो सही उपयोग करा तो ऑनलाइन शिकायत प्रणाली आम जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु बन सके है।
1: हाँ जी बात है साहब, भाई देखो कड़ी भी चीज़ ने सीखनो अपने हाथ में है, तो आप ही अगर से चाहवा तो आप ही हर तरह की तकनीक ने सीख सका, तो भैया ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जो है अंडी जो तकनीक है वने भी आप ही सीखा ताकि आपने अगर कोई समस्या आई रही है कोई समाधान तो वनडो समाधान चाहिए है तो आप ही तुरंत ही डिजिटल माध्यमों वनी समस्या रो समाधान प्राप्त कर सका।
0: बिल्कुल वैसा। देखो या तो जानकारी आपा दीदी सा और अबे आपा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और आपा श्रोता ने ले जावा मनोरंजन की दुनिया में और सुनावा एक बढ़िया सो गीत।
1: हाँ सर।

0: तो भाई साहब देखो बढ़िया सुगीत सुनियो, गीत सुने ना आप वाचा कार्यक्रम में आया और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा। अबे आपने बेना ने ले जावा उद्योग रे आड़ी और देखो घर बेटा अगरबत्ती उद्योग आपा वणाने बतावा हासा।
1: हाँ साहब, देखो भारत में कही है कि देखो धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा रो देश आपी के वहाँ तो अटे पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान और शुभ अवसर आपे अगरबत्ती रो विशेष महत्व है। घरा में मंदिरा में और धार्मिक स्थला पे सुगंधित वातावरण बनावा रे लिए अगरबत्ती रो उपयोग आपी सदियों करता है यहाँ। और यही कारण है कि आज अगरबत्ती उद्योग जो है वो एक महत्वपूर्ण कुटीर और लघु उद्योग के रूप में विकसित हुई गयो है साहब।
0: बिल्कुल भाई साहब देखो अगरबत्ती उद्योग खाली आपा धार्मिक आस्थाओं जुड़े तो को व्यवसाय नहीं कह सका बल्कि यो एक लाखों लोगों ने रोजगार देवा वालों मोटो उद्योग है। विशेष रूपों जो ग्रामीण क्षेत्र है वना रे महिलाओं रे वास्ते ये आय रो महत्वपूर्ण स्रोत बन गयो है। कम पूंजी और सीमित संसाधना में भी अणि उद्योग ने शुरू कर सका और अणि वास्ते छोटा उद्यमियों रे वास्ते लाभकारी मान्यो जावे है।
1: हाँ साहब, देखो अगरबत्ती बनावे लिए मुख्य रूपों अपने बांस की पतली लकड़ियाँ, चारकोल पाउडर, जिगट पाउडर और सुगंधित तेलारो उपयोग करना पड़े है। तो पहला तो यो काम हाथों करिया जातो हो, अब यो मशीनार माध्यम बड़ा स्तर पे वेवा लाग्यो है। तो तरह तरह की खुशबू रे लिए और आकर्षक पैकेजिंग रे लिए अणि उद्योग ने बाजार में एक नई पहचान भी मिल गई है साहब।
0: बिल्कुल भाई साहब और देखो भारतीय बाजार।

0: साथ साथ विदेशा में भी आपाने अटारी वनीते की अगरबत्ती अच्छी खासी मांग है। अगरबत्ती उद्योग जो है आपानी बेना ने आत्मनिर्भर बनावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रो है। कई स्वयं सहायता समूह है जो ग्रामीण महिलाओं ने घर में ही अगरबत्ती निर्माण काम कर रही है। यूं कही है कि रोजगार रे साथ साथ वाणा ने आर्थिक सशक्तिकरण भी मिली रो है।
1: हाँ सर, देखो हालांकि अणि उद्योग रे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी है। देखो कच्चा माल री बढ़ती कीमता, मशीनरी लागत और विदेशी उत्पाद रे वणा री प्रतिस्पर्धा रो उद्योग है, क्योंकि वणाओ भी होड़ा होड़ी चलती रहे है। तो अंडे अलावा कुछ स्थाना पे गुणवत्ता री भी कमी वे और रासायनिक सुगंधारो ज़्यादा उपयोग वे में स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी सामने आवे। तो अणि तरह री चुनौतियाँ तो सामने आवे ही है साहम।
0: बिल्कुल भाई साहब, देखो सरकार भी लघु उद्योगों ने बढ़ावा देवार वास्ते भांत भांत री योजनावा चलावे है। प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, आधुनिक तकनीक री सहायता अगरबत्ती उद्योग ने आपा मजबूत बनाई सका। हाँ, अगर स्थानीय उत्पाद ने प्रोत्साहन मिले तो यो उद्योग रोजगार और निर्यात दोयारे क्षेत्र में नवी ऊंचाइयां प्राप्त कर सके।
1: हाँ सर, तो भाई देखो आप ही तो यही कह सका हाँ कि अगरबत्ती उद्योग जो है भारतीय संस्कृति, रोजगार और आत्मनिर्भरता रो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यो न केवल सुगंध फैलावे है बल्कि लाखों परिवार ने और बनारे जीवन में खुशहाली लावे है सर।
0: बिल्कुल भाई साहब, और देखो आपा भी अपना प्रोग्राम में ने जानकारी रे साथे साथे अगर गीत संगीत ले नावा तो खुशहाली बड़े से है।
1: हाँ सर,
0: आपा ने सुनवा वाला री खुशी ने आपा बढ़ोतरी करता थका। बढ़िया सो गीत सुनावा सा।
1: हाँ सर।

0: तो अनुश्री भाई साहब देखो बढ़िया सुगीत होना है और आपकी तो पाछा आई गया अपनी बिना रहते भाई।
1: बिल्कुल सा, क्योंकि आप जागरूक हाँ
0: हाँ
1: और
0: सा
1: अन्य स्वास्थ्य आप कार्यक्रम भी लेना है। यहाँ जो टॉपिक लेना है वो है जन जागरण।
0: हाँ
1: देखो
0: सा
1: कहीं भी समाज और राष्ट्रीय प्रगति खाली योजना व संसाधनों नहीं वे बल्कि जागरूक नागरिक हुए वे जनान आम लोग अपना अधिकार कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी प्रति सचेत वे तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आवे और लोग अरे अनिश चेतना और जागरूकता ने आपा जन जागरण कह सका। हाँ
0: हाँ सा भाई देखो समाज रा लोगों ने शिक्षित वेणो स्वास्थ्य रे लिए जागरूक वेणो स्वच्छता रे प्रति पर्यावरण रे प्रति मतदान रे प्रति महिला अधिकार रे प्रति नशा मुक्ति रे प्रति और सामाजिक कुरीतियाँ रे प्रति अगर भी सब सजग रेवे हावचेत रेवे तो आप ही वणाने सब कुल मिलाई ने जन जागरण कह सका। हाँ सा
1: बिल्कुल भाई साहब, और देखो भारत जैसा देश में न जन जागरण रो खास महत्व है। आज भी समाज में कई हिस्सा में अशिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी और भेदभाव जैसी समस्या मौजूद है। और देखो अणा समस्या ने खाली कानून वर्णन खत्म नहीं कर सका बल्कि लोगारी सोच भी बदलनी जरूरी है और यही काम जो है जन जागरण करे है।
0: हाँ सा देखो आज के टाइम पे जन जागरण रहा बहुत सारा माध्यम है। टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक, रैलियाँ और जागरूकता अभियान ई सब जो है भी लोगों तक संदेश पहुँचावा रो एक बहुत ही बढ़िया साधन है। तो भई लोग जो है भी सावचेत भी सके सरकार और सामाजिक संस्था जो है भी समय समय पे स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण और मतदान जागरूकता जैसा अभियान चलावे है। तो जन जागरण जो है वंडो सबों बड़ो लाभ यो विवे है कि अणियों समाज में सकारात्मक बदलाव आवे है। जागरूक व्यक्ति अपना अधिकार रे हाते हाते कर्तव्य रे प्रति भी सजग वे जावे और वो शिक्षा रो महत्व जान सके और पर्यावरण री रक्षा करे ही है और हाते हाते समाज में फैली थे कि बुराई रो भी विरोध करे है।
1: बिल्कुल भाई साहब, और देखो मोटियारा री भूमिका जन जागरण में सगणी महत्वपूर्ण वेवे। अगर एक मोटियार समाज सेवा, शिक्षा और जागरूकता अभियान में सक्रिय भाग लेवे तो समाज में तेजियों बदलाव आई सके है। आज के ही मोटियार डिजिटल माध्यमों लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक मुद्दा प्रति जागरूक करी रहा है। कुल मिले ना पाई कह सका हाँ कि जन जागरण कहीं भी विकसित और सशक्त समाज री आधारशिला है। जागरूक नागरिक री राष्ट्र री प्रगति ने ले राष्ट्र ने प्रगति रे लेन जावे अनि वास्ते आपण सबरो कर्तव्य है कि आपा खुद भी जागरूक होना और दूजा ने भी जागरूक करा।
0: हाँ जी बात है साहब। भाई देखो जागरूक बनो तो बहुत ही जरूरी है। देखो कोई भी कहीं भी क्षेत्र में है अगर वो
1: बिल्कुल
0: जागरूक है तो वंडो काम जो है वो बहुत ही बढ़िया रेवे है। भाई अपने कार्यक्रम में भी आप ही जागरूक रेवा और देखो टेम टेम पे जानकारी आ रहे हाते आते गीत भी हुनाता ही रेवा। हाँ सा तो
1: बिल्कुल
0: भाई
1: सा
0: अब यह जानकारी तो भी गई अब हुनाई था एक बढ़िया सो गीत।
1: बिल्कुल सुनावा सा।

0: तो भाई सा देखो बढ़िया सो गीत सुनी और गीत सुनी पाछा आया कार्यक्रम में आया तो हाँ लेकिन जावर वास्ते आया हाँ और जावा आपा चित्तौड़गढ़ आपने बेना ने और आपने सुनवा वाला ने सभा ने घुमावा ने ले जावा सा।
1: हाँ सा वही देखो, राजस्थान में अपनी वीरता, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर रूप में पूरी दुनिया में जो प्रसिद्ध है, असु चित्तौड़ी नगरी में आप ही ले जाला, जो ऐतिहासिक नगरी है ऐसा। और यो नगर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि शूर वीरता, त्याग और स्वाभिमान री अमर गाथा है। अटारा कण कण में वीरा रो बलिदान और राजपूती आन बान री कहानी बसी थे की है ऐसा।
0: पैसा देखो चित्तौड़ दुर्ग भारत रो सब विशाल दुर्ग मीनू एक मान्यो जावे है और यो दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पे

0: स्थित है और लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैली तको है। यानी विशाल प्राचीरा, भव्य द्वार, ऐतिहासिक स्मारक, पर्यटना ने सदियों पुराना इतिहास परिचित कराई रहा है। और देखो इन्हें तो यूनेस्को भी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल की दो जनियों कई एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ी गई है।
1: हाँ सा यो दुर्ग जो है वो वीरता और बलिदान री बहुत सारी घटना रो साक्षी है। रानी पद्मनी रो जोहरी कथा आज भी लोगा रे दिल में सम्मान और गर्व री भावना जगावे है। अणि सरिकाओं महाराणा प्रताप री वीरताओं जुड़ी थकी जो यादा है वी भी अणि भूमि ने विशेष बनावे है ऐसा।
0: बिल्कुल वैसा। और दुर्ग रे मायने जो विजय स्तंभ है वो पर्यटका ने खास आकर्षण रो आकर्षित करे है, क्योंकि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित यो स्तंभ मेवाड़ी विजय और गौरव रो प्रतीक मानो जावे। अंडे अलावा कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा महल, पद्मिनी महल अटे आवा वाला पर्यटका ने इतिहास री अद्भुत झलक दिखावे है।
1: हाँ सा देखो इतिहास रे हाथे हाथे चित्तौड़ अपनी संस्कृति और लोक परंपरा रे लिए भी प्रसिद्ध है। अटारा जी मेला है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, पारंपरिक खान पान है, वे सब जो है आवा वाला लोगा ने राजस्थान री संस्कृतियों परिचित करावे है। और दूर दूर आवा वाला लोग जो है वो अटारी आतिथ्य भावना और सांस्कृतिक रंगा में रंग जावे है सा।
0: कुल मिलन वैसा यूँ कह सका कि चित्तौड़गढ़ केवल एक शहर नहीं है, पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि साहस, त्याग और संस्कृति रो जीवंत पहचान है। अटारो पर्यटन लोगारे इतिहास जोड़वारे साथे साथे देश री समृद्ध विरासत रो संदेश भी देवे है।
1: हाँ जी बात है साहब। भाई देखो अपनी जी बहना है वी भी अपने अटारी जो संस्कृति है वने जाने और बटे जावे और बनाऊ सब खुद भी परिचित हुए और दूसरा ने भी परिचित करावे, अपनी आवा वाली पीढ़ी ने भी परिचित करावे सा।
0: बिल्कुल वैसा। देखो कार्यक्रम में जानकारियाँ तो खूब सारी वे वादा करवाने भी खूब वे मन करे कि आपा बात करता ही रहे, आपा बेना ने अपना श्रोता लोगों ने छोड़ा ही नहीं। पर देखो कार्यक्रम रो भी एक टाइम वे और अबे आपा घड़ी रे देखी रहा हाँ तो चालवारो टाइम वे गयो है, तो आपा इजाजत लेवा चाला सा। राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।

अभी आप सुन रहे थे सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम सहेली यारी बाड़ी। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी उदयपुर आप सुन रहे हैं अपने रेडियो ऐप यानी न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से और ओटीटी ऐप जिसका नाम है वेव्स। यहाँ पर आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी और कहीं भी सुन सकते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं सुरीले गीतों की तरफ। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं फिल्म आशिकी 2 से। ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

ऋषि के ढोल सुन का गाना अभी आपने सुना। इसे मिठुन ने संगीत से सजाया और लिखा इरशाद कामिल ने। आप फिल्म संगीत में हैं हमारे साथ, आकाशवाणी उदयपुर चैनल है ये। अगला गीत है हिमेश रेशमिया की आवाज़ में। आपको लिए चलते हैं एक बार फिर उसी दौर में

आपकी खातिर इस फिल्म का गाना भी आपने सुना हिमेश रेशमिया की आवाज़ में और रचना भी उन्हीं की रही। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अगला गीत एक बार फिर हिमेश रेशमिया की आवाज़ में साथ दे रही हैं श्रेया घोषाल। आशिक बनाया आपने इस फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी उदयपुर पर अब वक्त है विकास चर्चा पे कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर विषय पर आपसे बात करने का। आज क्या विकास चर्चा का विषय है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक बेहद लोकप्रिय योजना है, जिसके तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को अपने व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण देना। इस योजना के तहत अब अधिकतम लोन राशि को बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। लोन की लेने की जो है वो श्रेणियां जो है वो विभिन्न प्रकार की हैं। मुद्रा योजना को व्यवसाय के विकास के चरणों के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे प्रथम शिशु लोन योजना, दूसरा किशोर लोन, तीसरा तरुण लोन और चौथा तरुण प्लस लोन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये हैं कि बिना गारंटी के इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए आपको बैंक के पास कोई भी संपत्ति या गारंटी

गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसका उद्देश्य ये है कि ये लोन विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए लिया जा सकता है। ब्याज दरें विभिन्न वाणिज्यिक जो बैंक है या क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है और NBFC की अपनी नीतियों के आधार पर ब्याज दरें तय की गई हैं, लेकिन ये अन्य व्यावसायिक लोन की तुलना में बहुत किफ़ायती रखी गई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेने के लिए जो पात्रता रखी गई है वो है कोई भी भारतीय नागरिक जिसका अपना कोई बिजनेस प्लान हो या जो मौजूदा काम को अपना बढ़ाना चाहता हो वो इस लोन के लिए आवेदन कर सकता है। इस लोन को लेने के लिए जो प्रमुख दस्तावेज चाहिए उनमें सबसे प्रथम आपका पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या किसी प्रकार की वोटर आईडी कार्ड आपकी जहाँ पर आप रहते हैं। दूसरा है आपका निवास प्रमाण पत्र। तीसरा जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है वहाँ का पता और उसका प्रमाण तथा पिछले वित्तीय रिकॉर्ड। आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हैं? आप अपनी नज़दीकी सरकारी या निजी बैंक, ग्रामीण बैंक या वित्तीय संस्थान की शाखा में जाकर सीधा आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सरकार के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जन समर्थ पोर्टल या उद्यमित्र पोर्टल पर जा सकते हैं।

0: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आज अपने विकास चर्चा में इस विषय पर सुनिए कुछ प्रमुख जानकारी के बारे में। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। वक्त हो चला है कि आपको हम जोड़ें आकाशवाणी दिल्ली के साथ। यहां से कुछ ही पलों में रिले किए जाएंगे हिंदी में दोपहर समाचार। बने रहें आकाशवाणी उदयपुर के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण

0: परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोड़ स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और

0: पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए

0: श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। अब हमारे किसान भाई और बहन सुनेंगे उनका जानकारियों से सजा कार्यक्रम कृषि जगत।

0: सा। तो बढ़िया बढ़िया सा गीत हुणावा और कार्यक्रम की शुरुआत करा सा।
1: बिल्कुल करा सा।
0: तई देखो घरे महीने आप ही पोषक आहार उत्पादन कणी तरीका कर सका अणी पे आज जानकारी देवांगा सा।
1: बिल्कुल वैसा गणी हो जानकारी आप लेना या देखो घर माते शुद्ध और पौष्टिक आहार रो उत्पादन करवा रे वास्ते आपने एक आत्मनिर्भर मॉडल तैयार कर सका। हाँ अंडे वास्ते मुख्य तकनीका और उचित प्रबंधन ने अपनानो जरूरी वे है।
0: हाँ सा देखो पोषक आहार उत्पादन रे लिए पोषण वाटिका यानी कि किचन गार्डन रो प्रबंधन आप ही अच्छे तरीका अगर करा तो बहुत अच्छो पोषक आहार आप ही घर रे महीने ही जिस तरह की आपने घर आंगन में बालकनी में या छत पे उगई ने आप ही कर सब्जियां उगई ने फल उगई ने कर सका। हाँ
1: बिल्कुल वैसा। और अंडे वास्ते आपने 80 जगह चुननी है जिते रोजाना आपा 4 से 5 घंटा री धूप आवती देखी देखी रहा वहाँ। और देखो मौसम रे अनुसार फसला रो भी आपने चयन करना चाहे जैसे सर्दी वगैरह है तो में पालक मेथी धनियो गाजर मूली टमाटर और गोभी आपा उगाई सका। हाँ
0: हाँ सा। और गर्मी रा मौसम में और मानसून में लौकी तोरई भिंडी मिर्ची बैंगन ग्वारफली और करेला जैसी सब्जियाँ आप ही उगाई सका। हाँ और कम टाइम और कम जगह में सबों ज़्यादा प्रोटीन विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पावारे लिए सबों अच्छो तरीको है कि आप ही घर महीने ही सब्जियाँ उगावा। और वनडे लिए मूँग मोट चना या मेथी रा दाणा वही रात भर भिगोई ने पचे सूती कपड़ा में बांधने पचे 24 से 48 घंटा में भी तैयार अंकुरित अनाज रूप में तैयार हुई जा तो बना ने कच्चा या पचे उबाल ने आप ही खाई सका। हाँ सा।
1: और देखो अंडे लारे लारे सरसों मूली गेहूँ या मेथी रा जो बीज वे अनाने भी एक छोटी ट्रे में आपा हल्की मिट्टी में कोकोपीट बिछे अगर घना रूप में बोई दा तो रोजाना हल्को पानी छिड़कता रहा तो 7 से 10 दिना में जिंदा 2 से 3 पत्तियाँ आई जावे तो वंदा देखो आपा अनाने जल रहे ऊपर काटी ला और इन्हें सलाद या सूप या सैंडविच में इस्तेमाल कर सका। हाँ
0: हाँ सा देखो घर रे महीने भी आधुनिक तकनीकल तकनीक जिस तरह की वर्टिकल फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक्स अनारी तकनीका रो इस्तेमाल करने अभी बढ़िया तो जो उत्पादन है वो पोषक आहार रो कर सका। हाँ
1: आप जैसे वर्टिकल फार्मिंग की बात कर रहे हो देखो वर्टिकल फार्मिंग में जगह की कमी वेवा पे आप दीवार माते स्टैंड रो उपयोग कर बोतला या पाइप में पौधा लगाई सका अणी कई वेवेला कि आपने जगह नहीं भी वेवेला तो भी आप अटे खेती बाड़ी के बारो मतलब है कि आप किचन गार्डन तैयार कर सका। हाँ
0: हाँ सा देखो रसोईरा गीला कचरा जिस तरह की सब्जियाँ रा छिलका है बची थे की चाय पत्ती है अनाने पचे एक मटका में या प्लास्टिक की बाल्टी में डालने घर पे या फिर जैविक खाद भी बना सका। हम तो रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना पड़े तो अन्य तरीका घर महीने भी पोषक आहार और देसी खाद आप तैयार करने पोषक आहार प्रबंधन कर सका। हाँ सा
1: बिल्कुल वैसा। तो यह तो बढ़िया सी जानकारी आप दी थी। हाँ किसान भाई ने अबे आपको तो बढ़िया सो गीत सुनाई दासा।
0: हाँ सर।

0: राम राम अनुश्री भाईसा,
1: राम राम उपासना भाईसा।
0: कृषि जगत कार्यक्रम हुणवा वाला सगड़ा ही जणा ने भी आपनो
1: राम राम सा।
0: देखो भाई, कार्यक्रम रे महीने बढ़िया बढ़िया सी जानकारियां रहते हैं, गीत भी है।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दी, हाँ, ये देख कैसे?
0: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका,
6: हाँ मेरा फेवरेट कलर, हमेशा शॉपिंग।
7: I know माँ, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: I know ना।
9: RBI कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: तो अनुश्री भाई सा देखो, बढ़िया सो गीत हुनायो और हाथे हाथे संदेश भी हुनाया सा, और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अबे जानकारी देवा किचन गार्डन विस्तार रे बारा में।
12: बिल्कुल भाई साहब, देखो आप घर पे पोषण आहार री बात करी रहा की तो पहले, तो देखो पोषण आहार री बात करी रहा, तो पोषक आहार उत्पादन रे नहीं सगर आप सोचा कि किस तरह आप आगे बढ़ सका, तो भी यह बात वैसे की रही है कि देखो किचन गार्डन अगर घर में है तो पोषण आहार भी आपने मिले ले से, तो अणि वास्ते आपने किचन गार्डन रे वास्ते आप बात करा हाँ कि किचन गार्डन रो आप विस्तार किस तरह कर सका। हाँ
11: हाँ सर, देखो घर रे पाछे या पचे छत पे जटे भी खाली जगह आपने मिले वही जगह पे आप किचन गार्डन यानी कि गृह वाटिका रो विस्तार आप करने पचे साल भर शुद्ध और जैविक सब्जियाँ प्राप्त कर सका। हाँ
12: बिल्कुल भाई साहब, देखो अणु के एक सब पहले आपने एक योजना बनावनी, जगह रो चुनाव करनो पड़े, ताकि कही कि किचन गार्डन रे वास्ते आपने 80 जगह रो चुनाव करनो चाहे, जटे रोज कम कम आपने 5-6 घंटा री धूप आती रहे, और किचन गार्डन रो विस्तार करवा रे वास्ते आपने यो ध्यान रखनो है कि जगह आपने पास पर्याप्त नहीं भी वे तो भी आपा काम कर सका। हाँ
11: हाँ सा, देखो वनडे लिए कहिए कि अगर विस्तार करवा री जगह नहीं वे तो भी कम जगह में भी देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा वनडो उपयोग करा, जितनी जगह है वनडो ही सब बढ़िया तरीका उपयोग करा, तो पछे आप ही हाउ विस्तार माने हाउ उत्पादन कर सका, जिस तरह की जमीन रे अलावा भी आप दीवारा रो भी उपयोग कर सका। हाँ तो और ऊर्ध्वाधर खेती करता था आप बोरी PVC पाइप या कबाड़ राजी डिब्बा वे वणा में पुदीनो धनियो और मिर्ची उगाई सका। हाँ
12: बिल्कुल वैसा, देखो अंडे अलावा देखो आजकल तो छता माते भी गार्डन बनाई सरिया आपने सामने जगह वेनी जरूरी नहीं है, आप छत

0: माते भी गार्डन विकसित कर सको। और जेनी तरह आप केरा हो बोरी है पुराना डिब्बा है आनी तरह देखो पुराना टायर वे जो गाड़ी रहा मोटा टायर वे वना टायरा में ने भी आप नीचे की तरफ प्लास्टिक बिछेन वनी में भी आप किचन गार्डन तैयार कर सका। जेनी में ना आप कोई भी चीज़ सब्जी है जैसे टमाटर का पौधा भी है या पच्चे मिर्ची है ये चीज़ें आप बोई सका। हाँ
1: हाँ सर देखो वनडे लिए आपने करना को ही पड़ेगा कि मिट्टी तैयार कर सबों पहली करनी पड़ेगा और पौधा रो पोषण रो प्रबंधन करना पड़ेगा। जैसे कि मिट्टी जो है वह दमदार बनावारे लिए आपने सामान्य मिट्टी में 40% तक गोबर री सड़ी तक की खाद या पछे वर्मी कंपोस्ट और 10% तक नदी री रेत मिलानी पड़ेगा ताकि मिट्टी जो है वह भुरभुरी वे सके।
0: देखो आगेला चरण में ने आपा चला। हाँ तो देखो ऋतु रे अनुसार आपने फसला रो चयन करना है। मुख्य सब्जी अरे बीच में कमो कम समय वाली जो फसला जैसे कि मूली है पालक है धनिया आपा उगाई सका। हाँ अंडे अलावा देखो क्यारे अरे चारों तरफ आपा गेंदा रा पौधा जरूर लगाई सका। आनी कही है कि महकू जो हानिकारक कीट वे सब्जियों दूर रेवे है।
1: हाँ सर देखो और वनडे अगला चरण में आप ही सिंचाई और मल्चिंग रो काम करना पड़े आपने। तो तेज गर्मी में मिट्टी री नमी बचावारे लिए पौधा री जड़ा रे आसपास सूखी घास पत्तियाँ या गन्ना री जो खोई वेवा विचई देवा और यूँ आसपास वन में कई वे पानी भी कम लागेगा आसपास नमी वनी थकी रहेगा और खरपतवार भी नहीं उगेगा। तो अन्य तरीकों आपने ध्यान रखना है और गर्मी रा दना में आपने सुबह जल्दी या शाम री टाइम पे पानी पिलाना पड़ेगा सर।
0: और देखो वटा बाद अगर आप बात करें घरेलू कीट नियंत्रण री तो देखो अणि मीने कही है भी कि कणी भी तरह रा कीट या रोग रे शुरुआती अवस्था में ने सापाने 5 मिली लीटर नीम रो तेल जो है थोड़ो सो लिक्विड सोप या पचे 1 लीटर पानी में मिले न छिड़क के देनो चाहे अणियों कही है फंगस या मरोड़ या रोग जो है वणी बचा वे सके। और अंडे लारे लारे आपा खाटी छाछ ने भी पानी में मिले पौधा पे छिड़काव करा तो भी पौधा ने आपा कीटू बचाई सके। कहाँ
1: हाँ तो देखो भाई अपने किसान भाई तो खेती बाड़ी रो काम कर ही है यो काम घरे महीने भी कर सके बिना भी वन में पूरा सहयोग कर सके। और अन्य तरीकों किचन गार्डन रो विस्तार करने घरे महीने ही आप ही पोषक आहार रो उत्पादन भी कर सका। हाँ सा
0: बिल्कुल वैसा देखो पोषक आहार उत्पादन के साथे साथे अगर अच्छो पोषण मिली तो शरीर स्वस्थ रही स्वस्थ रहे वहाँ पा तो मन में एक उमंग और खुशी पैदा हुए वे। और जिन उमंग खुशी पैदा हुए वैसा तो आपा हमेशा यूँ लगे आपने कि थोड़ो कहीं गुनगुनाई लेवा। और अगर लारे लारे अगर कोई संगीत बज जावे कोई गीत बज जावे तो आनंद ही दुगुनो हो जावे।
1: हाँ सा आप रो इशारो समझ गई हूँ तो भाई आप ये सुनाई दा एक और बढ़िया सो गीत।
0: बिल्कुल सुनावा सा।

0: अरे मैं आपके थाने ले जाऊं यार, तू फालतू री चिकार मत कर, मारे और भी काम है।
1: मने नी ले जाना रो कारण बता दो, कहीं टिकट नहीं मिले के कोई और कारण है? ते तो कहो ता टिकट बुक करा दू जीआर में।
0: जीआर?
1: हाँ हाँ जीआर में, डेली गाड़ी है बेंगलुरु बालोतरा। बात करूँ गणपत सिंह जी ने, हाथों हाथ बुक करा दू।

0: अच्छा मैं थाने एडो भलो लागू।
1: अरे थाने हाल मालूम नहीं है, मैं थारा हूँ कितो प्यार करूँ। अरे थे तो मारा फोन नंबर है चांद हो चांद। अरे मैं तो भगवान सु विनती करूँ कि मने अगला हाथ जन्म में थे ही मिलो।
0: ए भगवान माने अगला जन्म में भी अड़ी लुगई मत मिल जो।
1: क्यों मारू बत्ती कौन है रूपाली, मैं थाने खारी लागू।

0: तो अनुश्री भाई साहब देखो तो बढ़िया सो अपी गीत सुनाए सा और अबे अपने किसान भाइया ने आपकी जानकारी कहा करावा कि नकली खाद री पहचान कणी तरीका करो। तो भाई देखो नकली और असली खाद में फर्क पतो करवारे वास्ते देखो अलग अलग तरह री खाद में पतो करवारे वास्ते अलग अलग तरीको है सा। जिस तरह की असली DAP री पहचान करनी वे तो अपने कई करनो है कि थोड़ा सा DAP रा कुछ दाना जो है वो हाथ में ले ने वने महीने चूनो मिलाई ने पछे वणा ने आपस में मल नो। तो मलवाऊँ कई वेगा वन में तेज गर्मी निकलेगा और वने अतरी तेज गर्मी निकलेगा कि वने सूंघनो भी मुश्किल हो जाएगा। तो अपने हमें लेना है कि या असली DAP है सा।
1: और देखो अगर यूरिया री पहचान करनी है तो यूरिया री पहचान करवारे वास्ते आपने कई करनो है कि अने पानी में पूरी तरह घुल जानो छावे और इन गोल ने छुआ या ठंडो ठंडो लागनो छावे यही संडी असली पहचान है।
0: हाँ सा देखो असली सुपर फास्फेट री पहचान है कि वंडा दाना जो है भी सख्त वेवे और भूरा काला बादामी रंग रा वेवे और कुछ दाना अगर आपकी तवा पे गरम करा तो भी दाना फूले नहीं है तो समझ लेनो है कि यो असली सुपर फास्फेट है सा।
1: और देखो जिंक सल्फेट री अगर आप पहचान करा तो जिंक सल्फेट री पहचान यह है कि अंडा जो दाना है हल्का पीला और भूरा बारीक कण रे आकार रा वेवे है। और देखो अंडे अलावा DAP रो गोल में जिंक सल्फेट रो गोल मिलावा पे अगर एक थक्को या अवशेष बनी जावे तो आपने होचनो है कि यो असली है।
0: हाँ सर देखो असली पोटाश री पहचान करनी हुए तो अणमें नमक और लाल मिर्च जैसो मिश्रण पोटाश रे कुछ दाणा ने नमक करने पछे यदि आपस में अगर भी नहीं चिपके तो पछे अणनो मतलब है कि भी असली है। और पोटाश ने पानी में घोलवा पे अंडो जो लाल भाग है वो पानी में ऊपर तैरवा लाग जावे है सा।
1: बिल्कुल भाई साहब देखो यह जानकारी तो आपा दीदी है कि आप जो किसान भाई और बहना जो भी किचन गार्डन रो काम करे है तो वे अगर घर में लाइन अगर खाद वापरी रहा है तो वे अणी तरह अपने असली और नकली खाद की पहचान कर सके है। और अबे आप अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ाता था का एक गीत और सुनाई दा सा।
0: हाँ सर

0: तो अनुश्री भाई साहब देखो बढ़िया सो गीत सुनाया हो और गीत रे आते आते ही अपने कार्यक्रम रूटीन दी गयो है तो आप ही विदा लेवा सा
1: राम राम सा
0: राम राम सा।

0: हमारे किसान भाई और बहनें सुन रही थी कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजने को हैं और अब हम सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के आप

0: अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब से कुछ देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि DK शिवकुमार मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जेमिनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, PV सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। शाम 5 बजे सभी रिले और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। शुरुआत में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम FM रेडियो लिक्सिटी के श्रोता भी सुन सकेंगे।

0: दिन ढल गया, सूरज भी अब थम गया, आसमान में रंगों का मेला जम गया, हवा में है सुकून, दिल में है मिठास, शाम आई है लिए अपने साथ कुछ एहसास।
1: चलो थोड़ी देर सब चिंताओं को भूल जाएं, मुस्कुराहटों के इस पल को सजाएं, कहानी संगीत और बातें दिल से करें, इस प्यारी शाम को यादगार बनाएं।
0: बिल्कुल दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5 और हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या और मेरे साथ हैं
1: मानस।
0: स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय की जो सिर्फ पत्थरों और इमारतों की कहानी नहीं बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया एट द रेट 2047 हेरिटेज मॉन्यूमेंट यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत की ऐतिहासिक धरोहरों का भविष्य।
1: 2047 एक ऐसा भारत है जो आधुनिक भी होगा और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी, जहाँ टेक्नोलॉजी आगे होगी लेकिन इतिहास जो है वो पीछे नहीं छूटेगा।
0: क्योंकि किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी नई इमारतों से नहीं बल्कि उसकी पुरानी विरासत से होती है। हमारे किले, महल, मंदिर, मस्जिदें, बावड़ियाँ और स्मारक, ये सब हमारी संस्कृति की जीवित गवाह हैं।
1: अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ हर राज्य, हर शहर अपने अंदर एक इतिहास समेटे हुए हैं। कहीं राजस्थान के विशाल किले हमें देखने को मिलते हैं तो वहीं दक्षिण भारत के में अगर हमें भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं, कहीं पे मुगल कालीन की जो इमारतें हैं तो कहीं पे बौद्ध स्तूप भी देखने को मिलते हैं।
0: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक भारत आता है तो वह सिर्फ जगह नहीं देखने आता, वह भारत की कहानी महसूस करने आता है।
1: ताजमहल को देखिए, सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि एक प्रेम का प्रतीक है। कुतुब मीनार जो कि हमारी स्थापत्य कला की कमाल की मिसाल है, हवा महल, लाल किला, कोणार्क मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, हर धरोहर अपने अंदर की एक जो समय की है वो एक कहानी समेटे हुए है।
0: बिल्कुल, अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन धरोहरों को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है?
1: क्योंकि ये हमारी पहचान से जोड़ती है, हमें हमारी पहचान से जोड़ने वाली ये जो चीज़ है ये आने वाली पीढ़ियों को बताती है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है।
0: बिल्कुल, आज के बच्चे मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में बड़े हो रहे हैं, अगर उन्हें अपने इतिहास से जुड़ना है तो इन धरोहरों को बचाना बहुत ज़रूरी है।
1: और साथ में इसके अलावा जो हेरिटेज मोन्यूमेंट्स है ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देते हैं। हमारा जो टूरिज्म है वो बढ़ता है, रोज़गार मिलता है और जो देश की हमारी छवि है उसको पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत स्थिति देता है।
0: बिल्कुल, सोचो।

0: अनस, जब भारत 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हमारा देश कैसा होगा?
1: मेरा मानना है कि तब भारत एक ऐसा देश होगा जहां आधुनिकता और विरासत साथ साथ चलेंगी।
0: बिल्कुल, जहां हेरिटेज साइट्स सिर्फ घूमने की जगह नहीं होगी बल्कि लर्निंग सेंटर बनेगी, जहां लोग वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए इतिहास को महसूस कर पाएंगे। सरकार भी कई योजनाओं के ज़रिए हेरिटेज कंजर्वेशन पर काम कर रही है। पुरानी इमारतों का रिस्टोरेशन किया जा रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: आज का युवा जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है, तो अगर वही युवा अगर हमारे हेरिटेज को में अवेयरनेस फैलाए तो फिर एक काफ़ी बड़ा बदलाव आ सकता है।
0: बिल्कुल, हम अपने आसपास की ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानें, दूसरों को बताएं और उनकी सफाई व सुरक्षा का ध्यान रखें।
1: क्योंकि विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं होती है, बल्कि ये हमारे आसपास होती है।
0: अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ की धरती खुद इतिहास बोलती है।
1: उदयपुर के महल, चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का सोनार किला, आमेर फोर्ट, ये सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं है बल्कि हमारे पूरे राजस्थान की एक शान है।
0: बिल्कुल, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति हमारी संस्कृति, कला और परंपराओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता।
1: 2047 का भारत तब भी सच में विकसित भारत कहलाएगा जब वह अपनी संस्कृति और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ेगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनका नाम सुनते ही देशभक्ति साहस और संघर्ष की तस्वीर सामने आ जाती है। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने सिर्फ आज़ादी का सपना नहीं देखा बल्कि उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
3: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की।
2: बिल्कुल, सावरकर सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे लेखक, कवि, समाज सुधारक और एक महान विचारक भी थे।
3: उनका जीवन संघर्ष, साहस और राष्ट्र प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है।
2: बिल्कुल, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था।
3: बचपन से ही उनमें जो देशभक्ति की भावना थी वो काफ़ी मजबूत थी। कहा जाता है कि छोटी उम्र में उन्होंने जो वीरों की कहानियाँ सुनी थी उससे सुनकर वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे।
2: बिल्कुल, उनके परिवार पर भी देशभक्ति का गहरा प्रभाव था, लेकिन बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया जिसके कारण जीवन में कई कठिनाइयां आई।
3: फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा और धीरे धीरे वे युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय होने लगे।
2: सावरकर का मानना था कि भारत को आज़ादी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलेगी।
3: इसी सोच के साथ उन्होंने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने एक संगठन बनाया, अभिनव भारत।
2: इस संगठन का उद्देश्य था युवाओं में देशभक्ति जगाना और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना।
3: उस समय अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर काफ़ी अत्याचार कर रही थी और ऐसे ही माहौल में सावरकर जैसे क्रांतिकारी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे थे।
2: बिल्कुल, बाद में सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए,
3: लेकिन वहाँ जाकर भी उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने विदेश में रहकर भी भारत की आज़ादी के लिए जो काम है वो अपना जारी रखा।
2: बिल्कुल, लंदन में

0: उन्होंने कई भारतीय छात्रों को एकजुट किया, वे भाषण देते थे, लेख लिखते थे और युवाओं में क्रांति की भावना जगाते थे।
1: उन्होंने 1857 की क्रांति पर भी एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने उस भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया।
0: यह किताब अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इससे लोगों में आज़ादी की भावना बढ़ रही थी।
1: सावरकर की जो गतिविधियाँ थी वो अंग्रेज सरकार को काफ़ी परेशान कर चुकी थी।
0: बिल्कुल, 1910 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें भारत लाया जा रहा था, तब उन्होंने समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश भी की थी।
1: हालांकि वे दोबारा पकड़ लिए गए, लेकिन उनका जो साहस देखकर पूरी दुनिया काफ़ी हैरान हो गई थी।
0: बिल्कुल, इसके बाद सावरकर को काला पानी यानी अंडमान की सेलुलर जेल में भी भेजा गया था।
1: यह जेल उस समय की जो सबसे कठोर सजा मानी जाती थी, कैदियों से बहुत कठिन काम करवाए जाते थे।
0: बिल्कुल, सोचिए, एक छोटी सी कोठरी, अकेलापन, कठोर मेहनत और अत्याचार, लेकिन इन सब के बावजूद सावरकर का हौसला नहीं टूटा।
1: उन्होंने जेल में भी लिखना जारी रखा। कहा जाता है कि जब कागज़ और कलम उन्हें नहीं मिलते थे, तब वे दीवारों पर किलों से और जो अपनी कविताएं थी वो लिखते थे और उन्हें याद भी कर लेते थे।
0: बिल्कुल, उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान कभी हारता नहीं है।
1: सावरकर सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे।
0: वे जात पात और छुआछूत के खिलाफ थे। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत बनेगा जब सभी लोग बराबरी से रहेंगे।
1: उन्होंने मंदिरों में सभी जातियों के लोगों के लिए जो प्रवेश था उसका समर्थन भी किया।
0: उनकी सोच थी कि देश की ताकत उसकी एकता में होती है।
1: सावरकर एक अच्छे लेखक और कवि भी थे।
0: उनकी कविताओं और लेखों में देशभक्ति साफ दिखाई देती थी। उनके शब्द लोगों के अंदर जोश भर देते थे।
1: उन्होंने इतिहास, राजनीति और समाज पर भी कई सारे लेख लिखे।

0: दोस्तों, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। हर दिन कुछ नया बन रहा है, नई खोज हो रही है और युवा अपने आइडियाज़ से दुनिया बदल रहे हैं। आज भारत के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने तक सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीक और नए इनोवेशन के जरिए देश का भविष्य बना रहे हैं।
1: और एक ऐसे ही एक युवा टेक्नोक्रेट और एंटरप्रेन्योर हैं शमिक गुहा।
0: बिल्कुल, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जानेंगे शामिक गुहा के सफ़र के बारे में, कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई।
1: शमिक गुहा एक युवा एंटरप्रेन्योर और टेक्नोक्रेट हैं जो कि स्मार्ट मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
0: वे अल्टर स्मार्ट मोबिलिटी नाम की कंपनी के को फाउंडर और CEO हैं। यह कंपनी खास तौर पर रोड सेफ्टी और स्मार्ट हेलमेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है।
1: आज जब सड़क दुर्घटना और ऐसी बड़ी समस्या जो बन चुकी है, तब ऐसी जो टेक्नोलॉजी इस पर काम करना समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और शुरू से ही टेक्नोलॉजी में उनकी रुचि भी रही है।
1: कई युवा सिर्फ डिग्री तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन ऐसे में जो शमिक हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई को इनोवेशन से जोड़ा।
0: बिल्कुल, उन्होंने समझा कि टेक्नोलॉजी का असली उद्देश्य लोगों की ज़िंदगी आसान और सुरक्षित बनाना होना चाहिए।
1: अब बात करते हैं उनके स्टार्टअप एल्टर स्मार्ट मोबिलिटी की।
0: यह स्टार्टअप स्मार्ट हेलमेट और राइडर सेफ्टी टेक्नोलॉजी पर काम करता है।
1: उनकी टीम जो है उन्होंने ऐसे हेलमेट्स और सिस्टम विकसित किए हैं जो कि रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए मदद करते हैं।
0: आज भारत में लाखों लोग दो पहिया वाहन चलाते हैं, लेकिन हेलमेट होने के बावजूद कई लोग उसे सही तरीके से पहनते नहीं हैं।
1: इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी जो कंपनी है उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया है जो कि हेलमेट और चिन स्ट्रैप डिटेक्शन है, ऐसी सेफ्टी फीचर्स पर आधारित है।
0: इनोवेशन सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना नहीं होता है, बल्कि किसी समस्या का बेहतर समाधान ढूंढना होता है।
1: और शमिक गुहा की सोच भी यही रही, टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो लोगों की ज़िंदगी में रियल इम्पैक्ट ला सके।
0: आज इंडिया स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में शमिक जैसे युवा टेक्नोक्रेट देश के लिए प्रेरणा है।
1: शमिक गुहा और उनकी जो कंपनी है उन्होंने लोगों को शार्क टैंक के जरिए भी जाना है।
0: बिल्कुल, इस प्लेटफॉर्म ने उनके स्टार्टअप और आइडियाज़ को देश भर में पहचान दिलाई है।
1: लेकिन वे किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ एक टीवी शो नहीं होता, उसके पीछे सालों की मेहनत, एक्सपेरिमेंट्स और फेलियर्स भी होते हैं।
0: बिल्कुल, कई बार स्टार्टअप जर्नी में लोगों को रिजेक्शन भी मिलता है, लेकिन

0: असली एंटरप्रेन्योर वही होता है जो हार नहीं मानता।
1: आज के युवाओं के लिए श्रमिक गुहा का सफ़र जो है वो एक काफ़ी बड़ा संदेश है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है तो आप उसे पूरा करने का जुनून है तो आप उसे बड़े बड़े बदलाव जो है वो ला सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही है बल्कि छोटे शहरों और युवाओं के पास भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है।
0: बिल्कुल, ज़रूरत है लर्निंग माइंडसेट की, नई चीज़ें सीखने की और ख़ुद पर विश्वास रखने की।
1: आज भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में से एक है वो बन चुका है।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मोबिलिटी,

0: तभी असली विकास होगा।
1: शमी, गोवा की जर्नी हमें सिखाती है कि इनोवेशन सिर्फ बड़े रिसोर्सेज से नहीं होते हैं, बल्कि बड़े विजन से आते हैं।
0: अगर सोच नहीं हो और मेहनत सच्ची हो तो युवा बहुत कुछ बदल सकता है।
1: आज ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को सही उपयोग करें और उसे देश और समाज के विकास के लिए एक साथ जोड़ें।

0: कुछ फिल्में समय के साथ भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और ऐसी यादगार फिल्मों के पीछे होते हैं कुछ महान कलाकार और निर्देशक जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा के उस महान फिल्मकार की जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज, संघर्ष और भारतीय संस्कृति को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया।
1: यह नाम है महबूब खान, एक ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दूरदर्शी कलाकार जिनकी फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा की प्राइसलेस हेरिटेज मानी जाती है।
0: बिल्कुल, आज 28 मई पर हम उनकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं और याद कर रहे हैं इनके हिंदी फिल्म की दुनिया में उनके योगदान को।
1: मदर इंडिया जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाकर उन्होंने भारत का नाम जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है और भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाई है।
0: बिल्कुल, मदर इंडिया 1957 के निर्देशन के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, दो नेशनल फिल्म अवार्ड जीते और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकेदमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी।
1: मदर इंडिया के अलावा 1940 में आई जो डकैत फिल्म शैली में औरत भी बनाई और इसी के साथ में 1949 में रोमांटिक ड्रामा के रूप में उन्होंने फिल्म अंदाज बनाई और रोमांचक संगीतमय के लिए रूप में उन्होंने आन बनाई, साथ में मेलो ड्रामा के रूप में अमर सहित ऐसी कई अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए भी वह जाने जाते हैं।
0: बिल्कुल, शुरुआती दिनों की बात करें तो दक्षिण भारतीय निर्देशक चंद्रशेखर की फिल्म की शूटिंग के दौरान महबूब ने चंद्रशेखर के साथ काम करने में रुचि दिखाई थी।
1: उनकी रुचि और कौशल को देखकर चंद्रशेखर ने नूर मोहम्मद अली, मोहम्मद शिप्रा, बदियावाला से अनुरोध किया कि वे महबूब को अपने साथ बॉम्बे के फिल्म स्टूडियो में छोटे मोटे काम करने के लिए ले जाएँ।
0: बिल्कुल, उन्होंने सागर फिल्म कंपनी के लिए फिल्मों का निर्देशन शुरू किया और कई नोटेबल फिल्म दी, जैसे डेक्कन क्वीन 1936, एक ही रास्ता 1939, अली बाबा 1940, औरत 1940 और बहन 1941 में बनाई।
1: इसके बाद 1945 में खान ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस महबूब प्रोडक्शंस स्थापित किया और इसके बाद में 1946 में उन्होंने संगीतमय हिट फिल्म अनमोल घड़ी का निर्देशन किया।
0: बिल्कुल, इन्होंने कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के करियर को स्थापित करने में मदद की और उन्हें आगे बढ़ाया, जो 1940, 1950 और 1960 के दशक के बड़े सितारे बने,
1: जैसे कि सुरेंद्र, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार, नरगिस। महबूब खान हॉलीवुड से प्रभावित थे और उनकी जो फिल्मों में अक्सर उस समय के हॉलीवुड शैली के शानदार सेट देखने को भी मिलते थे।
0: उनके इस योगदान के लिए 1963 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: साथ ही 30 मार्च 2007 को इंडिया पोस्ट ने महबूब खान और मदर इंडिया के जो दृश्य को दर्शाने वाला एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था।
0: केवल एक फिल्म निर्देशक नहीं थे वे, बल्कि भारतीय सिनेमा के ऐसे महान शिल्पकार थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज की सच्चाई, मानवीय भावना और भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।
1: एक अच्छा गाना दोस्तों हमारे मूड को बदल सकता है, हमें खुश कर सकता है और कभी कभी पुरानी यादों को भी ताज़ा कर देता है। और दुनिया के कुछ ऐसे कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ और पर्सनैलिटी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड सेलिब्रिटी काइली मिनोक की, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस है।
1: उनका पूरा नाम काइल एन मिनोक था, जो कि बचपन से ही उन्हें म्यूजिक और एक्टिंग में काफ़ी रुचि थी।
0: उनका जन्म 28 मई 1968 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। उनकी छोटी बहन डैनी मिनोक भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है।
1: कह सकते हैं कि कला और परफॉर्मेंस उनके जीवन का जो हिस्सा था उससे शुरू हुआ। उन्होंने अक्सर पॉप की राजकुमारी कहा जाता है और उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री और फैशन वर्ल्ड दोनों में एक मेजर स्टाइल आइकन के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
0: मिनोग अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला कलाकार है, जिनके रिकॉर्ड की बिक्री इंटरनेशनल लेवल पर 80 मिलियन से भी ज़्यादा है। बता दें दोस्तों कि 2024 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी एनुअल लिस्ट में भी शामिल किया है।
1: अपने करियर की शुरुआती पहचान मिली उन्हें अपने ऑस्ट्रेलियाई सोप ओपेरा नेबर से, जो कि एक चार्ली मिशेल की भूमिका में उन्होंने अपना रोल निभाया था।
0: 1990 के दशक की शुरुआत तक मिनोग ने ऑस्ट्रेलिया और यूके में कई हिट सिंगल गाने दिए, जिनमें द लोकोमोशन, आई शुड बी सो लकी, स्पेशली फॉर यू, हैंड ऑन योर हार्ट और बेटर द डेविल यू नो जैसे सॉन्ग्स शामिल हैं।
1: इसके बाद 2001 में आया एल्बम फीवर, जो कि मिनोग के लिए एक

0: इंटरनेशनल सक्सेस साबित हुआ और अब तक का उनका जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम भी बन गया है।
1: बिल्कुल, फिल्म जगत में मिनोग ने 1989 में आई फिल्म द डेलिक्वेंट्स से अपने एक्टिंग की शुरुआत की और स्ट्रीट फाइटर, मॉलिन रूज 2001, हॉली मोटर्स 2012 और सॉन एंड्रियास 2015 में भी नज़र आई। वे
0: रियलिटी टेलीविज़न में वह 2014 में द वॉइस यूके और द वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया दोनों में जज के रूप में भी दिखाई दी थी।
1: मिनोग को अपने करियर में इतना शानदार परफॉर्म करने पर कई अवार्ड भी मिले, जिनमें 2 ग्रैमी अवार्ड, 4 ब्रिट अवार्ड, 18 अरिया अवार्ड, ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड संगीत पुरस्कार, 2 एमटीवी वीडियो संगीत पुरस्कार, 3 एमटीवी यूरोप संगीत पुरस्कार और 6 मो पुरस्कार भी शामिल हैं।
0: अंत में यही कहा जा सकता है कि महबूब खान और काइल मिनोग दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत योगदान देकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है।
1: एक और महबूब खान ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं काइली मिनोग ने अपने म्यूजिक को और शानदार परफॉर्मेंस से दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता है।
0: इन दोनों महान कलाकारों की जर्नी हमें हार्डवर्क, क्रिएटिवनेस और अपने ड्रीम्स के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारा देश सिर्फ बड़े नेताओं, वैज्ञानिकों और कलाकारों से ही नहीं बना, बल्कि उन लोगों ने से भी बना है जिन्होंने आम मजदूरों और कामगारों की आवाज़ को बुलंद किया। जब भी हम देश के विकास की बात करते हैं, तब हमें उन लाखों मेहनतकश लोगों को भी याद करना चाहिए जो दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ाते हैं।
4: हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जननेता की जिन्होंने अपने विचारों, संघर्ष और समाज सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में खास पहचान बनाई है। राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि जनता की सेवा का रास्ता मानने वाले इस व्यक्तित्व का नाम है गोपाल रामानुजम।
3: बिल्कुल, एक इंडियन पॉलिटिशियन और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 1915 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1945 से 1947 के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्था हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ और मजदूर महाजन अहमदाबाद में ट्रेड यूनियन कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
4: इसके बाद में 1958 से 1960 तक INTUC के अध्यक्ष और 1964 से 84 तक महासचिव रहे। इसके बाद में 1985 में वे वापस अध्यक्ष चुने गए और 3 अगस्त 1994 तक इस पद पर बने रहे। राजनीति की बात करें तो वे 4 अगस्त 1994 से 15 जून 1995 तक गोवा के राज्यपाल रहे। इसके बाद 18 जून 1995 को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली।
3: बिल्कुल, उन्होंने 22 अगस्त से 23 नवंबर 1997 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला, जब तत्कालीन राष्ट्रपाल कृष्णकांत को उपाध्यक्ष चुना गया। अपने देश के प्रति इस समर्पण कार्य के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
4: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो समाज की समस्याओं को समझकर लोगों के विकास के लिए कार्य करे, साथ ही उन युवाओं को भी प्रेरणा

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो दोस्तों, राजनीति से हटकर अब अपन आगे बढ़ते हैं दक्षिण कोरिया के रिदमिक जिम्नास्टिक की ओर और बात करते हैं अब सोन येऑन जाय की। ये एक रिटायर्ड रिदमिक जिम्नास्टिक हैं जिन्होंने जिम्नास्टिक में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर स्पोर्ट्स में अपनी अलग पहचान बनाई और कामयाबी हासिल की है।
5: अपनी सुंदर प्रस्तुति, फ्लेक्सिबिलिटी और शानदार टेक्निक के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और उन्होंने दक्षिण कोरिया में रिदमिक जिम्नास्टिक्स क्वीन भी कहा जाता है। सोन येऑन जाय का जो जन्म है वो 28 मई 1994 को सियोल में हुआ था। बचपन से ही उन्हें डांस और गेम्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। जब वे छोटी थी तभी उनके परिवार ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी।
4: बिल्कुल, उन्होंने बहुत कम उम्र में रिदमिक जिम्नास्टिक सीखना शुरू कर दिया था। यह स्पोर्ट्स, डांस और फ्लेक्सिबिलिटी और इक्विपमेंट के यूज़ का मिक्सचर होता है जिसमें रिबन, बॉल, क्लब और हुप जैसे इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है। इन्होंने टीनेज से ही इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू कर दिया था। उनकी प्रस्तुति में कला और खेल का अद्भुत मेल दिखाई देता था।
5: वे दक्षिण कोरिया की पहली जिमनास्ट बनी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी जो सफलता है वो हासिल की। उन्होंने कई एशियाई और विश्व प्रतियोगिताओं में पदक जीते और साथ ही ओलंपिक खेलों में भी दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी बॉडी पर कंट्रोल और बैलेंस को मेंटेन करते

0: वे काफ़ी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस देती थी। म्यूज़िक के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना और कठिन तकनीक को भी आसानी से प्रस्तुत करना।
1: बिल्कुल, इनके द्वारा जीते गए मेडल्स की बात करें तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2014 में ब्रॉन्ज़ जीता, एशियन गेम्स में 2010 में ब्रॉन्ज़ के बाद 2014 में गोल्ड के साथ सिल्वर भी जीता, एशियन चैम्पियनशिप में 2013 में 3 गोल्ड के साथ 2 सिल्वर जीते, 2015 में 3 गोल्ड के साथ 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज़ जीता और 2016 में 5 गोल्ड जीते।
0: उनकी सफलता के बाद दक्षिण कोरिया में जो रिदमिक जिमनास्टिक्स की लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी और कई बच्चों ने इस खेल को अपनाना शुरू कर दिया। सोन यन जाए केवल खिलाड़ी ही नहीं थी बल्कि केवल दक्षिण कोरिया की लोकप्रिय पब्लिक का सेलिब्रिटी में भी शामिल रही। उन्होंने कई एड्स और टीवी शोज़ में भी काम किया। कोरिया में रिदमिक जिमनास्टिक्स की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बड़ी और कई

0: तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 1930 चित्तोगोन आर्मोनी रेड के क्रांतिकारी सूर्य सेन और उनके साथियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया।
1: इसके बाद में 1959 की बात करें तो बंदरों पर अंतरिक्ष प्रयोग के तहत अमेरिका ने दो बंदरों एबल और बेकर को अंतरिक्ष में भी आज ही के दिन भेजा।
0: 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। यह दिन भारतीय इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है।
1: और 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में दूसरी श्रृंखला के परमाणु परीक्षण किए जिन्हें पोखरण 2 का हिस्सा माना जाता है।
0: 2008 नेपाल आधिकारिक रूप से राजशाही समाप्त कर एक गणराज्य बना।

0: तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। दीजिए आज हमें इजाजत। मैं था आपका रेडियो दोस्त मानस और मेरे साथ थे
1: दिव्या।
0: स्वीकार कीजिए नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी युवा श्रोताओं ने सुना अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। शाम के 6 बजने को है, लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक

0: समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्ण पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। अब वक्त फिल्म संगीत का, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का पहला नगमा जिसे हमने आपके लिए लिया है फिल्म तुम मिले से। तुम मिले फिल्म के इस नगमे को आवाज दी है नीरज श्रीधर ने।

यंगिस्तान। जी हाँ, अगला नगमा हमने इसी फिल्म से लिया है जिसमें आप सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज़ को।

आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। आइए सुनते हैं अगला नगमा फिल्म यस बॉस से। आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य ने।

0: इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब लिए चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में सुनेंगे आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 6:45 का वक्त रहेगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का। समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी, पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीट वेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आज जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को जल और शरबत पिलाया गया। जैसलमेर में अभियान के तहत भू जल संरक्षण विभाग की ओर से जल संरक्षण शपथ, पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। सवाई माधोपुर में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जल संरक्षण कार्यों में उद्योग जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया गया। राजसमंद में उपमुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर पानी बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भरतपुर जिले में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा

0: 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने ये स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के तहत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सह सलाहकारों की नियुक्ति करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सकेगा। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल और प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों, खिलाड़ियों की भागीदारी और वास्तविक समय समन्वय के लिए अधिक प्रभावी योजना बनाने में सक्षम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान में प्रदेश ने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। 24 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में दो महीनों में राज्य में करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और 35,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि निरामया राजस्थान के विजन के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, त्वरित जांच, जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा, जन भागीदारी, तकनीक और संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर हम टीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहर और कस्बों में सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी ईद उल अजहा के मौके पर नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। नलमादादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में भी ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाजारों में त्योहारी खरीददारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कुलपति पद पर रहते हुए अनियमितताएं करने के आरोप में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। राजभवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये आदेश राज्य सरकार के परामर्श के बाद जारी किए गए हैं।

0: वहीं एक अन्य आदेश में राज्यपाल ने राजुवास जोबनेर के कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को अपने कार्य के साथ साथ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के आदेश दिए हैं। वहीं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एन के पांडे को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर नौतपा के दौरान तेज गर्मी का असर बना हुआ है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। वहीं राज्य के 25 से अधिक जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर और भरतपुर में आज दोपहर बाद हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीट वेव और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है।
1: हीटवेव का ये दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 27-28 मई से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघ गर्जन तेज हवाओं के साथ में कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघ गर्जन तेज अंधड़ तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
0: मानसून के आने से पहले कोटा जिले में वन विभाग ने बड़े स्तर पर पौधा रोपण की तैयारी शुरू कर दी है। जिले के मंडारा रेंज में इस बार पारंपरिक तरीके के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाने के लिए 5 लाख सीड बॉल तैयार की जा रही हैं। इन तैयार बीज की गेंदों को ड्रोन और श्रमिकों के माध्यम से जिले के वन क्षेत्रों में फैलाया जाएगा। इन सीड बॉल्स में अर्जुन रौंज खैर और कुमठा जैसी स्थानीय प्रजातियों के पौधों के बीज शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मिट्टी गोबर और राख के मिश्रण से तैयार ये बॉल्स बीजों को धूप कीड़ों और पक्षियों से सुरक्षित रखती हैं। बंजर और दुर्गम इलाकों के लिए ये तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीटवेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। कुर्बानी का प्रमुख इस्लामिक पर्व ईद उल अजहा आज जिले भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह फर्ज की नमाज के बाद से ही विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में शहर की मुख्य नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। वहीं एमआई रोड और जौहरी बाजार सहित सभी ईदगाहों में अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। घर घर में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। शहर की बकरा मंडियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध से

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ किया। 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में ग्राम स्तर तक नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर, चित्रकला प्रतियोगिता, संगोष्ठी और कार्यशाला जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में कल मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आगामी मॉनसून के दौरान प्रदेश भर में किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों और पिछले सालों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने हरियालो ऐप के माध्यम से पौधों की जियो टैगिंग एवं लाइव फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को लगाए गए पौधों की जीवितता को सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी पौधरोपण को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इस मॉनसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में जून माह एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मलेरिया उन्मूलन की दिशा में जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, मजबूत सर्विलांस और समय पर जांच तथा उपचार सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी जून माह में प्रदेश में व्यापक स्तर पर रोकथाम एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ग्राम स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां, रैली, विद्यालयों में कार्यक्रम, प्रचार कार्यों के द्वारा मलेरिया के कारण और बचाव के उपायों की जनता को जानकारी दी जाएगी। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून की शिक्षा सीधे तौर पर समाज से जुड़ी शिक्षा है। इसका उपयोग विद्यार्थी जरूरतमंद, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने विधि शिक्षा में राष्ट्र और समाज हितों को प्राथमिकता देने और इस दिशा में उच्च संवैधानिक मूल्यों के साथ प्रदेश को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने दीक्षा प्राप्त कर 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की डिग्रियां डिजी लॉकर में कंप्यूटर का बटन दबाकर लाइव की। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार को ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के लिए विशेष आमंत्रण प्रदान किया गया है। ये आमंत्रण उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से दिया गया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बीते दिनों फिट इंडिया साइकिल संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष आयोजन की थीम कॉमनवेल्थ डे 2030 रखी गई, जिसमें खिलाड़ियों, अधिकारियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्टेडियम परिसर के चारों ओर आयोजित साइकिल रैली रही। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों में शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली और कॉमनवेल्थ खेल 2030 के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

पहले आज की खास खबर प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सु संबंधित पढ़ेसरियां री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है और राज्य री घणकर ठोड़ा माथे तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी हलका माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रहवन रो पूर्वानुमान।

0: प्रदेश माए चाल रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जा रही है। आ गतिविधियां रो लखस इन अभियान सु 32 लोगां ने जोड़नो और जल संरक्षण रे प्रति जागरूकता बढ़ानो है। इनी कड़ी माए झुंझुनू जिले रा नवलगढ़ माए जन जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। कार्यक्रम माए आया लोगां ने पौधा बांटर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो गयो। भीषण गर्मी ने देखता थका राहगीरां ने पानी और शरबत पिलायो गयो। जैसलमेर माए अभियान रे तहत भू जल संरक्षण महकमारी कानीसू जल संरक्षण शपथ पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर माए आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत जिला कलेक्ट्रेट माए कार्यशाला राखी जी। इन कार्यशाला माए जल संरक्षण कामा माए उद्योग जगत स्वयंसेवी संस्थावां और सामाजिक संगठनारी सक्रिय सहभागिता माथे जोर दियो गयो। राजसमंद माए उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ने लेर पानी बिजली री आपूर्ति स्वास्थ्य सुविधावां और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री प्रगति री समीक्षा करी। वणा इन अभियान ने जन आंदोलन बनावन री जरूरत माथे जोर दियो। भरतपुर माए भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पढ़ेसरिया ने आश्वस्त करो कि CBSE री कानीसू शुरू करी जी ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM 32 पारदर्शिता पक्की करने रे लखसू शुरू करी जी है। एक चौखी पहल है। श्री प्रधान नवी दिल्ली माए CBSE रा अहलकारा रे साथे बैठक रे पाछे खबर नवीसासू बणतल माए आ बात कही। CBSE कक्षा 12वीं री परीक्षा रे पुनर्मूल्यांकन पोर्टल माए OSM माए विसंगतियां और तकनीकी खराबी ने लेर वणा पढ़ेसरिया ने आश्वस्त करो कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया रे चालता सगली शिकायतों रो समाधान करो जावेला।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा री संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। NTA रे मुजब परीक्षावां अब 31 मई 6 और 7 जून ने राखी जावेली। आज होवन वाली परीक्षा ईद उल अजहा रे कारण पुनर्निर्धारित करी जी है। NTA बतायो कि दीतवार ने परीक्षा देवन वाला उम्मीदवारों रा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और आने NTA री आधिकारिक वेबसाइट सू डाउनलोड करिया जा सके है। 6 और 7 जून ने परीक्षा देवन वाला बाकी उम्मीदवारों रा प्रवेश पाना भी बेगाई जारी करिया जावेला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम रे तहत राष्ट्रीय खेल संघामाए सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारारी नियुक्ति करेला। इन पहल रे माध्यम सु राष्ट्रमंडल खेल 2030 री तैयारियां ने चोखो बनायो जा सकेला। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि इन पहल रो लखस विशिष्ट डिजिटल प्रणालियां ने सुव्यवस्थित करनो और होड़ा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरा और खिलाड़ियां री भागीदारी और साचे वक्त रे समन्वय खातिर 32 प्रभावी योजना बनावण माए सक्षम करनो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान माए खास उपलब्धियां हासिल करी है। 24 मार्च सु शुरू हुआ इन अभियान माए 2 मीना माए राज्य माए करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करी जी और 35,000 सु 32 नुआ रोगियों की पहचान करी जी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि निरामया राजस्थान रे विजन रे तहत टीबी जड़ी गंभीर बीमारी रे उन्मूलन खातिर स्क्रीनिंग तुरंत जांच जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता रे प्राथमिकता दी जा रही है। वणा कहो कि जन भागीदारी तकनीक और संवेदनशीलता रे साथे स्वास्थ्य सेवावां मुहैया करार आपा टीबी मुक्त राजस्थान री दिशा माए काम कर रिया हां। कुर्बानी रो तिवार ईद उल अजहा देश भर माए धार्मिक उचास रे साथे मनायो जा रियो है। प्रदेश माए जयपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा शहर कस्बा माए सुवारे ईदगाह और मस्जिदा माए ईद री नमाज अदा करी जी। बाद में लोगां एक दूजे सु गले मिलर ईद री मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजारी नगरी अजमेर माए भी ईद उल अजहा रे मौके माथे नमाज रे पाछे लोगां एक दूजे ने मुबारकबाद दी। और ब्यूरो माणा खबर नवीसु।
2: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला

0: जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
1: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही माए भी ईद उल अजहारो परब अकीकत रे साथ मनायो जा रही है। इन मौके माथे बाजारा माए त्योहारारी खरीदारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कुलपति पद पर रहता थका अनियमितता रे कारण आरोप माए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप ने पद सू तुरंत हटाने रा हुकुम जारी करया। राजभवन सू जारी विज्ञप्ति रे मुजब ए आदेश राज्य सरकार रे परामर्श रे पाछे जारी करया गया है। वटीने एक दूजे आदेश माए राज्यपाल राजूवास जोबनेर रा कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा ने काम रे साथे साथे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु ने अतिरिक्त कार्यभार संभालने रा हुकुम दिया है। वटीने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर एन के पांडे ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय रो अतिरिक्त कार्यभार दियो गयो है। और अब है मौसम। प्रदेश रे घनकर थोड़ा माथे नौ तपारे चालता तेज गर्मी रो असर बनियोड़ो है। सगड़ा शहरा माए बदता तापमान और लू रे असर सू जनजीवन प्रभावित हुए रियो है। दिन रे वक्त सड़का माथे अघोषित कर्फ्यू जड़ा हालात बनियोड़ा है। लाड़ला 24 घंटा माए प्रदेश माए सबसू बत्ती तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर माए दर्ज करी जो। वठीने राज्य रा 25 सू 32 जिला माए लाड़ला 24 घंटा रे चालता दिन रो पारो 42 डिग्री सेल्सियस सू ऊपर दर्ज हुयो। श्रीगंगानगर और भरतपुर माए आज दोपहरा पाछे हल्की बिरखा होने सू लोगा ने गर्मी सू थोड़ी घनी राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो कि प्रदेश रा पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रहने री आस है।
2: हीट वेव का ये दौर अभी भी अगले 24-48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 27-28 मई से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघ गर्जन तेज हवाओं के साथ में हल्की बारिश की संभावना है। 29-31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघ गर्जन तेज अंधड़ तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
1: मानसून रे आवण सू पहलियां कोटा जिला माए वन महकमो मोटे स्तर माथे पौधा रोपण री तैयारी शुरू कर दी है। जिले रा मंडाणा रेंज माए इन बार पारंपरिक तरीका रे साथे साथे आधुनिक तकनीक रो प्रयोग करर हरियाली बधाने रो लक्ष्य राख्यो गयो है। इन रे तहत दुर्गम और पहाड़ी खेतरा माए हरियाली ने बधाने खातिर 5 लाख सीड बॉल तैयार करी जा रही है। आ तैयार बीज री गेंदा ने ड्रोन और मजूरा रे मार्फत सू जिला से वन खेतरा माए फैलायो जावेला। आ सीड बॉल्स माए अर्जुन रोंज खैर और कमुठा जड़ी स्थानीय प्रजातियां रा पौधा रा बीज भेड़ा है। ध्यान जोग है कि मिट्टी गोबर और राख रे मिश्रण सू तैयार आ बॉल्स बीजा ने धूप कीड़ा और पंछियां सू सुरक्षित रखे है। बंजर और दुर्गम इलाका खातर आ तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित वेरी है। प्रदेश माए 1-30 जून ताई बाल श्रम बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी रे खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलायो जावेला। इन अभियान रो लक्ष्य बाल श्रम और बाल तस्करी जड़ी गंभीर सामाजिक बुराइयां माते प्रभावी नियंत्रण स्थापित करनो और पीड़ित टाबरा रो पुनर्वास पक्को करनो है। अभियान रे प्रभावी संचालन रे खातिर सगड़ा जिला रा पुलिस अधीक्षका ने हुकुम दिया गया है। अभियान रे तहत होटल ढाबा ईंट भट्टा फैक्ट्रियां रेलवे प्लेटफॉर्म बस स्टैंड धार्मिक स्थल और अस्थायी बस्तियां माए रहरिया टाबरारी स्क्रीनिंग करी जावेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई ने आकाशवाणी सू मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। आ इन मासिक रेडियो कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। इनरे खातिर श्रोता आपरा टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और माय जीओवी ओपन फोरम रे माध्यम सू भी विचार भेजा जा सके है। ए सुझाव काले ताई स्वीकार करया जावेला। अजमेर रा किशनगढ़ एयरपोर्ट सू हवाई यात्रियां रे खातिर इंडिगो जुलाई महासू 2 नवी उड़ान सेवावां शुरू करन जा रही है। किशनगढ़ ने दिल्ली और नोएडा सू जोड़न वाली आ नवी फ्लाइट्स रे शुरू होने सू अजमेर किशनगढ़ ब्यावर और आसे पासे री बड़ी आबादी ने बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेली।

0: एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा बतायो कि 1 जुलाई सु दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू वेली आ उड़ान सप्ताह माए 4 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार ने संचालित करी जावेली। इनरे अलावा 2 जुलाई सु नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू करी जावेली आ सेवा सप्ताह माए 3 दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार ने संचालित वेली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रे माए भारत केंद्र कानीसू सवाई माधोपुर माए वीर सावरकर जयंती मनाई जी। छात्रपति शिवाजी युवा मंडल री कानीसू राखी जो जयंती जलसे माए सावरकर रे राष्ट्र निर्माण माए योगदान ने याद करता हुआ संगोष्ठी और चित्रकला होड समेत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। होड माए विजेतावा ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करो गयो। जैसलमेर माए भी सावरकर जयंती माथे न्यारी न्यारी होड़ा और संगोष्ठी राखी जी। इन मौके माथे घनी तादाद माए मौजूद युवावा ने पर्यावरण संरक्षण शपथ भी दिलाई जी। और खास खास खबर आखिर में एक कर फेरू सुनो। प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सु संबंधित पड़ेसरिया री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है। अर राज्य री घनकर ठोड़ा माते तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रेवन रो पूर्वानुमान। इनरे साथ ही प्रादेशिक समाचार रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करो जावेला। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम उपासना भाई साहब, राम राम।
1: राम राम रामा भाई, राम राम
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला हंगला किसान भाई ने अपनो राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।
0: देखो कार्यक्रम रो टाइम भी है और देखो बहुत बहुत जानकारी लेना है यहाँ।
1: हाँ
0: और
1: सा,
0: देखो किसान भाई, आज रणी कार्यक्रम में आप ही बात करांगा कि देखो तावड़ो जो है वो घणो तेज पड़ रहा है।
1: हाँ सा,
0: और आप ही सब जाना देखो नौ तपा भी स्टार्ट भी यो है और
1: हाँ
0: वो 25 तारीख को 2 जून तक चलेगा।
1: हाँ
0: और
1: सा,
0: देखो अने गर्मी में आप जे भी सब्जियां रिवावनी कर रहे हैं, जब भी फसल उगे रहा तो वंडो विशेष प्रबंधन किस तरह करनो है वो आज कार्यक्रम में आपकी बात करांगा सा।
1: हाँ सा भाई। देखो आना गर्मी रा दना में सब्जारी फसला जो है वणा ने तेज धूप और लू जो चले वणों बचानो और पानी री कमियों बचानो बहुत सबों बड़ी चुनौती है सा। आनी टाइम पे पौधा री उचित देखभाल और सही प्रबंधन करने ही आप ही अच्छी पैदावार ले सका। हाँ सा,
0: बिल्कुल सा। और देखा गर्मियारी वाली सब्जियां में आप भी देखा कि जो प्रबंधन में सबसे पहली बात है वह है सिंचाई प्रबंधन। यानी कि गर्मी में अगर पेड़ पौधा ने पानी नहीं दा तो वे जल्दी सूख जाए, कतरी
1: हाँ
0: बार देखो वे खराब भी हो जाए क्योंकि
1: हाँ
0: गर्मी रे पानी में वाष्पीकरण ज़्यादा हुए। और मैं आपने ध्यान रखना कि सिंचाई रो जो सही समय है वो तरीको बहुत महत्वपूर्ण है।
1: हाँ सा,
0: सिंचाई रे समय री बात करा तो हमेशा सुबह जल्दी उठने, जंदन सूरज नहीं निकले, या शाम रे समय सिंचाई करनी है, दोपहर समय आप सिंचाई करा तो पानी गर्म वे जड़ों पौधा री जड़ा है वे सड़ सजावे है।
1: हाँ सा। और देखो यदि सिंचाई रे अंतराल री बात करा तो देखो मिट्टी री किस्म रे अनुसार आपाने 3 5 दिनार अंतराल पे हल्की सिंचाई करता रहना चाहिए। नमी लगातार वणी थी की रहनी चाहिए लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए, अंडो पूरा ध्यान रखना है सा।
0: बिल्कुल किसान भाई। और देखो सिंचाई लाल आधुनिक तकनीक है, अंडो भी उपयोग करना है वही सके तो ड्रिप कलर सिस्टम है, टपक सिंचाई है, अंडा आपने उपयोग करना है। अंडा में आप भी देखा कि पानी लगभग 40 से 50% बचत हो जावे और पानी जो है वो सीधा जड़ा में चलो जावे ऐसा।
1: हाँ सा। और अंडे अलावा देखो मल्चिंग और पलवार भी आपने जरूर करनी चाहिए। भाई तेज धूप में मिट्टी की नमी जो है वह उड़ जावे तो वह रोकवारे लिए मल्चिंग सबों ज़्यादा असरदार उपाय है। पौधा री जड़ा रे आसपास री जमीन जो है वह सूखी घास पुआल गन्ना रिखोई या प्लास्टिक मल्चिंग करने पचे आपने ढाक देना चाहिए। और अणियों कही वेगा कि मिट्टी रो तापमान जो है वो नियंत्रित रहेगा, पानी री बचत वेगा और खरपतवार पैदा नहीं वेगा।

0: उस और देखो अधिकतर किसान भाई देखो जो भी सब्जियाँ उगे रहे तो अड़े बड़े देखो कि पोली हाउस भी लगे दें, तो पोली
1: हाँ
0: हाउस भी एक बेहतरीन तरीको है जानू। आप ही देखा कि जितनी तापमान चाहे, जितरो सिंचाई चाहे और जितरो श्रम चाहे, वर कम समय में और कम तापमान में और सही तरीकों देखो उनमें पोली हाउस में खेती वे वे
1: हाँ सर,
0: वंडेला। आप ही देखा कि लू और तेज़ धूपों भी बचा भी जावे। कई
1: हाँ
0: बार आप ही देखा कि जो विंड ब्रेक है जिन्हें आप हवा अवरुद्ध तो कह सका, वो
1: हाँ
0: क्षेत्र पश्चिम और उत्तरी किनारा पे उसी बड़वा वाली फसल में जिस तरह बाजरा वेगी, ज्वार वेगी, मक्का वेगी, दो या तीन लाइन में लगाना है, जो तेज और गर्म हवाओं सीधा सब्जा रहे पौधा तक तो पहुँचाओ में रोके है सा।
1: हाँ सर। अंडे अलावा देखो आप ही शेड नेट भी लगे सका, जिस तरह कि अगर आप ही कोई छोटा स्तर पे कोई किचन गार्डन लगे रखे हो तो वन में कहिए 50% वाला हरा रंगरा जी शेड नेट वे वनारो उपयोग करने भी पौधा ने झुलसवा आप ही बचाई सका। हाँ
0: बिल्कुल किसान भाई देखो आप एक कार्यक्रम का मैं बात करें कि घर हमारी सब्जियों में प्रबंधन कार्य किस तरह करना है। जट अभी पोषक तत्व तो प्रबंधन की बात कर रहा हूँ तो गर्मी में रासायनिक खाद और प्रयोग सीधा तौर पर करवाऊँ वचनों है, क्योंकि कई बार किसान भाई हमें समझ नहीं हुए, कोई कह दे कि रासायनिक वो उर्वरक रो प्रयोग करो और वंडो अगर प्रयोग ज़्यादा कर दें तो फसल ने नुकसान भी पे जाए।
1: हाँ सर
0: नाइट्रोजन की पूर्ति बात आप ही देख सका कि जो वर्मी कंपोस्ट है जिन्हें आप केंचुआ खाद भी कहाँ, या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद में प्रयोग करना है।
1: हाँ सर। और देखो अगर जरूरत हुए तो पानी में घुलनशील खाद जो वे वंडो सुबह या शाम रे टाइम पे आप ही छिड़काव कर सका। हाँ और खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी रा दाना में कहिए खरपतवार जो वे जो अपनी मुख्य फसल है वंडो सारो पानी और पोषक तत्व खींच लेवे है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: साहब,
1: ऐसा खरपतवार ने जरूर निकाल देना चाहे।
0: बिल्कुल साहब। और देखो समय समय पे हल्की निराई गुड़ाई भी करनी है, जड़ में जड़ाव में हवा मिलती रहे और मिट्टी की नमी रोकवाई क्षमता भी बढ़ती रहे। निराई गुड़ाई हमेशा शाम के समय करनी है। लाल लाल आपने ध्यान रखना है कि जो भी कीट और रोग है वनारो प्रबंधन भी विशेष रूप करना है।
1: हाँ
0: आप ही
1: सर
0: पानी कर ली दो है, आप ही धूपों बचाव कर ली दो है, लेकिन अगर आप ही कीट और रोग प्रबंधन नहीं करांगा तो वे भी अपनी फसलों ने खराब कर दें।
1: हाँ
0: तो रस
1: सर
0: चूसक जिस तरह मकड़ी वे गया है, थ्रिप्स वे गया है, एफाइड्स वे गया है, ये ज़्यादा के करें कि जो रस चूसक कीट है और ये फसलें नुकसान पहुँचावे।
1: हाँ
0: तो
1: सर
0: शुरू अवस्था में आपने ध्यान रखना है जो मैनिम जो नीम्र तेल आवे वंडो आप उपयोग कर सका, 3 और 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिले ने 10-15 दिन में छिड़काव कर सका। हाँ सा
1: हाँ सर अंडे अलावा देखो केतारे महीने पीला और नीला चिपचिपा ट्रेप लगाना चाहे, जानू कही वे कि उड़वा वाला जो कीट है भी प्राकृतिक रूप में नियंत्रित हुई जावे। और रासायनिक नियंत्रण रे वास्ते अपने अगर प्रकोप ज़्यादा है तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लीने पचे उचित कीटनाशक रो छिड़काव शाम रे टाइम पे अपने करना चाहे।
0: बिल्कुल साहब। सब्जियां प्रबंधन में तुड़ाई और विपणन रो भी विशेष रूप ध्यान रखना है। जना अभी तुड़ाई कर रही है तो जिस तरह भिंडी, लौकी, तरोई, करेला, खीरा है, तो अंडी तुड़ाई आपने जल्दी या शाम ढलता करनी है। तोड़वारे बाद देखो जो भी सब्जियां है तुरंत कहीं ठंडा या छायादार स्थान पर रखनी है, क्योंकि अगर तावड़ा में रख दांगा तो वे रूखी सूखी भी जाएगा, वे खराब
1: हाँ
0: भी हो जाएगा, वे जल भी
1: हाँ
0: जाएगा और जहाँ कीमत आपने मिलनी चाहिए वह कीमत आपने
1: नहीं
0: नहीं मिलेगा
1: मिलेगा।
0: सा। तो देखो वन पे हल्को पानी छिड़क देना है, जूट की बोरियाँ ढाक देनी है ताकि मंडी ले जाता समय वह ताज़ा वणी उतर रहे।
1: हाँ
0: तो देखो
1: सर
0: किसान भैया देखो आज अने कार्यक्रम में बात की थी कि गर्मियों में जो सब्जियां हैं वनारो प्रबंधन कार्य किससे करा, और देखो कार्यक्रम में बातचीत तो चलती रहेगा को तो एक रासायनिक लोगी थोड़ा सा।
1: बिल्कुल होना सर।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस

0: कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो किसान भाई देखो, राजस्थानी लोकगीत होने और देखो लाला रे देखो कि संदेश भी होने ऐसा। और देखो कार्यक्रम में अभी बात करांगा कि आ वाला समय में अपना तापमान किस तरह रहेगा और सामान्य फसल भी बात करांगा। तो देखो आज जो अधिकतम तापमान है लगभग 41-42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जो दोपहर समय काफ़ी तेज़ धूप और लू रेस जैसी स्थिति पैदा कर रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रात में लगभग 26 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जणु राता थोड़ी गर्म होनी देगा। हवारी आर्द्रता की बात करें तो हवारी जो आर्द्रता है मंडी गति करीब 31 किलोमीटर प्रति घंटा रे पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में चलेगा और हवारी नमी केवल 14-16% है। जन्मु मौसम काफी सूखो और गर्म महसूस कियो जा रो है सा।
4: हाँ देखो रामा भाई, ऐसा है कि सामान्य रूप आपी किसान भाया ने यो कहना चाहवांगा कि अणी मौसम में बेल वाली फसला में न्यूनतम नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और या नी तो पछे कई वेगा मिट्टी में अगर नमी री कमी वे जाएगा तो वणी परागण पे असर वेगा, जणी फसल उत्पादन में कमी आई सके। और फलदार पौधारा बगीचा लगावारे वास्ते उचित दूरी अपने रखनी है और उचित दूरी पे गड्ढा खोदने पछे वणाने खुला छोड़ देना है। और पछे यदि बारिश होएगा वही टाइम पे अपने पौधा री रोपनी करनी है।
3: बिल्कुल सर, और गर्मियों में आप देखा कि गहरी जुताई है वह आवश्यक है। जड़ में आप देखा कि मक्का है, दलहनी है, तिलहनी है, सब्जी वर्गीय फसला में जैसे पुट्टी, रेनी फॉर्म व जड़ गाढ़ सूत्र कमी प्रबंधन वाते खेता में लगभग 15-20 दिन के अंतराल पर आपने गर्मी में गहरी जुताई करनी है। फलदार पौधा आप देखा कि अमरूद है, अनार है और नींबू वर्गीय फला में बगीचा लगा हुआ थे उचित दूरी 6-6 मीटर पर गड्ढा जो है वे खोदने खुला छोड़ देना है ऐसा।
4: और देखो बैंगन की फसल में प्ररो और फेल फल छेदक कीट रा बचाव वास्ते फल जी भी ग्रसित फल है या प्ररो है बनाने इकट्ठा करने पचे नष्ट कर देना चाहे। और अगर कीट की संख्या ज़्यादा वीगी है तो स्पिनोसेट कीटनाशी 48 EC प्रति 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी की दर छिड़काव आसमान साफ वे तो कर देना है।
3: बिल्कुल साहब, जैसे मूंगरी बात करा तो तापमान में बढ़ोतरी देखते तक किसान भाई ने सलाह दी जाए कि ग्रीष्मकालीन मूंगरी सिंचाई करनी है। बेल वाली सब्जियां की बात करा तो कुष्मांड कुल्ली सब्जियां में जिस तरह लाल भ्रंग क्रीट अंकुरित नई पत्तियां खरीने फसल ने नुकसान पहुंचावे। अंडी रोकथाम वाला भी कर सका कि जे भी कार्बोरेल 5% चूर्ण है मैंने 25 किलो प्रति हेक्टेयर दर पे सुबह सायकाल पे छिड़काव करना है ऐसा।
4: और जड़ी जगह पे देखो मिर्ची, भिंडी, तरबूज, खरबूजा और मैं अगर पित्त शिरा विषाणु रोग रो प्रकोप वे तो बटे किसान भाई जो है इमिडा क्लोरोपीड 8 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में घोल बनाई ने पचे 8 दिन रा अंतराल पे 2 बार छिड़काव कर देवे। और अगर नी तो कही वेगा कि पत्ती धब्बा रोग रे नियंत्रण रे वास्ते इमिडा क्लोरोपीड रा छिड़काव 5 दिन रे बाद 22 दिन रो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रो घोल बनाई ने भी आपने छिड़काव करना पड़ेगा।
3: बिल्कुल सर, और तेज हवा चालवा में आप देखा कि जो भिंडी है व अन्य सब्जियां रही है तुड़ाई करवाने सलाह दी जाए ताकि संभावित नुकसान हो सके। और अन्य समय आपने देखा कि जो पशुपालन है वंडो विशेष रूप ध्यान रखना है। पशुओं ने स्वच्छ और ताज़ा पानी भरपूर मात्रा में देना है। जटे वे रह रहा है वटे साफ सफाई रखनी है। समय समय पर दाना पानी की व्यवस्था करनी है। और गर्मी रे प्रकोप बचाव वाते वे सके जो सूखी बोरियां हैं उन्हें गीली करने साइडा पे लगे दा जणू वहाँ हवा आती जाती रहे और खुला स्थान पे उन्हें बांधना है ताकि वे सुरक्षित और स्वच्छ रह पाए सा। तो देखो कार्यक्रम में ये तो जानकारी की दी और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और होना योग राजस्थानी लोकगीत।
4: हाँ सर।

0: तो रामा भाई देखो अत्रो बढ़िया सु गीत हुनायो सा। और अबे देखो कार्यक्रम ना मैंने आज अपनी योजना लीन आया हाँ, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना।
1: बिल्कुल सर, देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बात करें तो राजस्थान सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो स्वास्थ्य संबंधित है। अने योजना ने आप ही देखा कि पहला जो है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम में जानो जाए, अब नाम बदलने डो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दीदो है। अने योजना रो उद्देश्य है कि राज्य के जितना भी नागरिक है उन्हें देखो भारी भरकम खर्चों बचाणो है और कैशलेस यानी बिना पैसा री इलाजी सुविधा देनी है सा।
0: हाँ सा देखो आनी योजना रे महीने 25 लाख रुपया तक रो स्वास्थ्य कवर दियो जावे है। यानी योजना रे तहत प्रत्येक पात्र परिवार ने हर साल 25 लाख रुपया तक रो कैशलेस इलाज अस्पताल में भर्ती वेवा पे सुविधा दी जावे है सा।
1: बिल्कुल सर, और देखो गंभीर बीमारी इलाज की बात करें तो सामान्य ऑपरेशन लार लार देखा कि गंभीर खर्च इलाज इस तरह हार्ट ट्रांसप्लांट भी गयो है, लीवर ट्रांसप्लांट भी गयो है, कैंसर संबंधी जैसी बीमारी वेगी है या न्यूरो सर्जरी वेगी है जैसी सुविधा भी इन्हें शामिल की थी है। भर्ती रे पहला और बाद रो खर्च जो है वो अस्पताल उठावे। आप ये देखा कि लगभग 5 दिन पहला और दवाई रे जांच तक 15 दिन रे बाद तक खर्च रो जो पैकेज है वो शामिल है सा।
0: हाँ सा देखो अंडे महीने दुर्घटना बीमा भी शामिल है सा। अन योजनाओं जुड़िया थे का जी परिवार है वहाँ ने 10 लाख रुपया तक रो दुर्घटना बीमा यानी दुर्घटना में अगर मृत्यु हुई गई है या अपंगता हुई गई है तो वहाँ पे मिले है सा।
1: बिल्कुल सर, और पात्रता और श्रेणियारी बात करा तो दो मुख्य श्रेणियां हैं, निशुल्क श्रेणी जिन्हें फ्री कैटेगरी का अंड में कोई प्रीमियम नहीं देना है, अंडो पूरा खर्च सरकार उठावे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आप देखा कि आवाला परिवार है, सामाजिक आर्थिक गणना वाला परिवार है और एक है राज्य रा लघु एवं सीमांत किसान जो विभिन्न सरकारी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी है या जो आर्थिक रूप कमजोर ईडब्ल्यू श्रेणी में ही रहा है तो वे भी अंडो लाभ उठे सके हैं।
0: हाँ सर,
1: और जनार आप देखा कि प्रीमियम श्रेणी में है वन में देखा कि ऊपर दी गई मुफ्त श्रेणी में नहीं आवे वे मात्र जो 850 प्रतिवर्ष या आंशिक प्रीमियम दी ने अड़ी योजना रो लाभ ले सके सा।
0: हाँ सर देखो भाई आवेदन रे लिए जरूरी दस्तावेज कई कई चाहेगा ये भी आप ही बताई दा। तो सबों पहला तो भाई देखो जन आधार कार्ड और आधार कार्ड ये तो देखो यूं कहवे कि सबों महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो जन आधार कार्ड जो है वो योजनाओं लिंक वे यो ध्यान रखना है और आधार कार्ड जो है वंडो मोबाइल नंबर लिंक वेणो जरूरी है और मुफ्त श्रेणी रा लाभ लेवारे लिए वणों संबंधित प्रमाण पत्र जो चाहेगा जिस तरह की किसान रा भूमि सीडिंग रिपोर्ट है राशन कार्ड है वी सब चाहेगा सा।
1: बिल्कुल साहब, जो आधार कार्ड के रहा हो वो मोबाइल लिंक बनो चाहे कतरी बार आप जो जो भी पात्रता करवा जाऊँगा तो एक ओटीपी वेरिफिकेशन आवे तो जो आप मोबाइल चालू हुए वही आधार कार्ड आपने लिंक करना है और उन्हें फॉर्म भरना है। अब आवेदन किस तरह करना है तो आप ही देखा कि ऑनलाइन स्वयं जैन आप राजस्थान जो SSO पोर्टल है वनडे माध्यम में लॉग इन करने और योजना आवेदन कर सके। ऑफलाइन ई मित्र पे आप नज़दीकी जो ई मित्र है वटे जाइने आप जो जन आधार कार्ड है वनो आप रजिस्ट्रेशन करवे सको और जो भी पॉलिसी की जो जमा रकम है वह जमा करें वनडो प्रीमियम प्रिंट जो है वो आप पॉलिसी जो प्रिंट है वो ले सको सा।
0: हाँ सा और राज्य रा जितना भी सभी सरकारी अस्पताल और सरकार संबंधित जीव जितना भी निजी अस्पताल है वहाँ में अणी योजना रे तहत मुफ्त इलाज मिल सके है सा। और अस्पताल में भर्ती बेती टाइम पे आपने आप जन आधार कार्ड या आयुष्मान आरोग्य पॉलिसी दस्तावेज दिखाना पड़े है सा।
1: बिल्कुल सा, और देखो कि प्रत्येक संबंध अस्पताल में देखो कि स्वास्थ्य मार्गदर्शक वे जिन आप हेल्प डेस्क दे सका तो वटे जैन आप पूरी कार्रवाई कर सको और में देखो कि जो कैशलेस इलाज जो मजूरी दिवा वाले मरीज में पूरी मदद करे है सा। तो देखो सरकार द्वारा जो भी योजना चली जा रही वहाँ ने अपना फायदा लेना है और देखो आज कार्यक्रम में आपकी बात की थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और देखो कार्यक्रम में वाताचीता तो चलती रहेगी और देखो किसान भाइयों मनोरंजन भी करावा और हुनावे राजस्थानी लोकगीत।
0: हाँ सर।

0: सुपनों में आ गया जी। देखो ये राजस्थानी लोकगीत होने और देखो कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी की। देखो अभी जो भी खान पान ले रहा है, जब भी जड़ी भी खान पान रो प्रयोग कर रहे हैं तो वन में जागरूकता वेणो बहुत जरूरी है,
1: हाँ सर,
0: क्योंकि भोजन में आहार जागरूकता रो ही दो अर्थ है भोजन के प्रति समझने विकसित करना है। क्योंकि आज के समय आप देख रहे हैं कि आपने जो भी छोटा टाबर टूबर है तो उन्होंने कहीं भी खावारी चीज़ ना तो वे खावे नहीं, वे मना कर दे यो नहीं भाई रो है
1: हाँ
0: ना। जड़े चाइनीज भी बात करा, जड़े जंक फूड भी बात करना तो वे चावू खावे।
1: हाँ
0: तो
1: सर,
0: देखो आज के समय में आप देखा कि अपने शरीर के पोषण वाते जी भी पोषक तत्व है जिन्हें आप संतुलित भोजन कह सका वो वेणो बहुत जरूरी है। और अंडे बातें देखो कि जो फास्ट फूड रो बढ़ते तो को चलन है तो पोषक तत्व की कमी रे कारण कथी देखा कि बच्चा कुपोषण का शिकार भी जावे।
1: हाँ
0: वन में आप
1: सर,
0: देखा कि चाहे कम वजन भी जावे या मोटापा पड़ जावे। तो देखो एक संतुलित शारीरिक समझ आपने विकसित वेणो जरूरी है।
1: हाँ सर, भाई देखो जागरूकता की शुरुआत अपनी रसोई और अपनी थाली में वे है सर। एक आदर्श और संतुलित थाली में सभी जरूरी पोषक तत्व सही अनुपात में वेणा बहुत
0: बिल्कुल
1: जरूरी है।
0: सा
1: अबे देखो तत्वारी बात करा तो अपने ऊर्जा शरीर में ऊर्जा लावारे वास्ते कार्बोहाइड्रेट वेणो जरूरी है। जो जनरली आप ही अपनी थाली में एक हिस्सों अनाज यानी कि गेहूं और या चावल रो इकट्ठो ले सका, और अंडे अलावा रिफाइंड अनाज मैदारी जगह पे आप ही मोटो अनाज ले सका, जिस तरह की बाजरो, ज्वार, रागी, मक्का, वन वो लेवांगा तो वो अपने शरीर में फायदो करेगा
0: बिल्कुल
1: सा।
0: सा। और शारीरिक विकास और मरम्मत वाते आप देखा कि प्रोटीन आपने वाते बहुत ही ज़रूरी है। वन में आप देखा कि जे भी दाला हैं वन और आप उपयोग कर सका, सोयाबीन है, दूध है, पनीर है, दही है, अंडा है, अंडो आप उपयोग कर सका तो देखो शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूरा मिल जाएगा सा।
1: और अंडे अलावा देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, और वनडे लिए देखो अपने शरीर में विटामिन और खनिज तत्वारी जरूरत पड़े है। तो वनडे लिए आप ही हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी रंग बिरंगी जी सब्जियां आवे और ताजा फल आवे, वना रो उपयोग आपने जरूर करना चाहे सा।
0: बिल्कुल सा। और शरीर बातें देखो हेल्दी फैट्स यानी स्वस्थ वसा भी बहुत जरूरी है। वसा री जटा पे बात करना तो सीमित मात्रा में आपने देखा कि जो शुद्ध तेल भी गयो है, घी भी गयो है, सूखा मेवा भी गया है तो अणा भी आपने इस भोजन में प्रयोग में लाना है। लाल लार आप देखा कि स्थानीय मौसमी खाद्य ने प्राथमिकता देनी है। कतरी बार आप देखा कि लोग सोचे कि जो महंगा या विदेशी फल है वणाऊँ खाऊँ आपने शरीर स्वस्थ भी जाएगा या सुधार भी जाएगा तो जिस तरह मंडो प्रयोग में आपने गलत धारणा है। और आपने अड़े बड़े उगवा वाला जो मौसमी सब्जियां हैं जिस तरह गर्मी में आम भी गया है, तरबूज भी गया है, पुदीना भी गई है, ककड़िया भी गई है, सर्दी में आप ही देखा है तो अमरूद है, गाजर है, पालक है तो ये आप ही देखो कि क्षेत्रीय अवसर अनुकूल भी है और आपके शरीर में पोषक तत्व भी प्रदान करे है ऐसा।
1: हाँ सर, और अलावा देखो आपने मोटा अनाज रे प्रति भी जागरूक वेणो बहुत ही जरूरी है। देखो अपनी भारत सरकार जो है वो वैश्विक स्तर पे मोटा अनाज रा उपयोग ने बहुत ही ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि देखो मोटा अनाज यानी कि बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, ये सब अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा फायदो करे है सा।
0: बिल्कुल सा। और ये अनाज जो है पोषक तत्वों खजानों है और में भरपूर मात्रा में आप ही देखा कि फाइबर है, आयरन है, कैल्शियम है, यो वे जो कतरी बार आप ही देखा कि जो मधुमेह भी गयो, मोटापा भी गयो और दिल की बीमारियों बचवा में मदद भी करे है
1: हाँ
0: सा।
1: सर, देखो अंडे अलावा देखो अपने शरीर ने पोषण देना बहुत ही जरूरी है, और पोषण के प्रति जागरूकता जो है वह हर उम्र में अलग महत्व रखे है, और अनिवासी वह अपने विशेष ध्यान देना जरूरी है। जिस तरह देखा आप ही कि बच्चों जो है गर्भ में आवे तो वही टेम ली ने जन्म रहा शुरुआती 2 साल तक मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सबों ज़्यादा महत्वपूर्ण वे। तो आनी टाइम पे माँ और बच्चा दोयारा पोषण के वास्ते आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़े है
0: बिल्कुल
1: सा।
0: सा। और बच्चों घर में आवे बनती पहला सबसे पहला तो माँ ने बिल्कुल स्वस्थ रहना जरूरी है,
1: हाँ
0: माँ ने
1: सर,
0: संतुलित भोजन लेना जरूरी है। और बच्चा में आपने देखा कि जो किशोरी और महिला स्वास्थ्य है उनमें भी विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि जो जो बच्चा रो समय बढ़ते जावे तो अलग अलग जो समस्या वे उत्पन्न हुए जिस तरह

0: कि एनीमिया वीगियो, खून की कमी एक आम बात है। और मैं आपने देखा कि जो आहार में आयरन है, विटामिन सी युक्त जो चीज़ें है, जिस तरह पालक है, गुड़ है, चना है, आंवला है, नींबू है, ये अनिवार्य रूप में शामिल करना चाहे, तो जो किशोरी महिला स्वास्थ्य संबंधी समस्या आवे तो वो आप निदान पाई सका सा।
1: हाँ सर, देखो अंडे अलावा पैकेट्स पूर्जे यानी कि जो डिब्बा बंद चीज़ा मिले बाजार में, तो वनारे प्रति भी जागरूकता रखनी बहुत जरूरी है सा। क्योंकि पैकेट रे पाछे देखो न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे थे कावे, तो वना ने आपाने जरूर पढ़ लेनो चाहे, तो और जो जांच लेनो चाहे कि वना में कतरी कैलोरी है, कतरी चीनी है, सोडियम कतरो है, ट्रांसफेट कतरो है। अगर हेल्दी या डाइट लिखियो देखो पैकेट है, तो वन में भी चीनी और प्रिजर्वेटिव जो वे वनारी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं वे अणी बात रो ध्यान रखना है
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि एक्सपायरी डेट रो ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आप ही ले लाओ छोटा टाबो टूबो ने देना, तो कई बार देखो कि जान पे भी आई जाए, आफत आई जावे, कई बार बच्चा बीमार भी जावे सा। तो देखो जब भी आप पैकेट बंद चीज़ खरीद रहे हो, इन्हें विशेष रूप से देख लो, जाँच लो। और पोषण और जागरूकता वास्ते सरकारी सामाजिक प्रयास भी चल रहा है, जान में आप ही देखा कि सरकार द्वारा पोषण अभियान है वो चलाया गया है, वो देखो कि भारत में चलाया और एक प्रमुख कार्यक्रम है। और मैं हर साल आप ही देखा कि जो पोषण माह है, पोषण सप्ताह है, वो मनाया जाए, कटे कटे पोषण पखवाड़ा भी मनाया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर आप ही देखा कि जो आंगनवाड़ी है, गाँव रहा जो भी छोटा छोटा अस्पताल है, तो बड़े देखो कि हर व्यक्ति में पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके सा।
1: और देखो पोषण रे वास्ते तो स्कूलों में भी पोषण वाटिका विकसित करने, बच्चा ने खुद सब्जियाँ उगाणो और बनारो महत्व हम जायो जाई रो है, यो एक बहुत बेहतरीन कदम साबित भी रो है। अंडे अलावा मिड डे मील में भी मोटा अनाज और पोषक तत्व ने शामिल कियो जाई रो है सा।
0: बिल्कुल सा, सरकार यही प्रयास है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और देखो कि सरकार द्वारा हर स्कूलों में देखो कि जो आप बताए कि मिड डे मील है, तो वणु है कि बच्चों स्कूल में आवे, देखो शिक्षा लाल ला रहे, अपने स्वस्थता के बारे में भी सीखे। निष्कर्ष में आप ही कह सकते हैं देखो पोषण जागरूकता एक महंगा सप्लीमेंट्स खानो नहीं है, बल्कि आपने जो पारंपरिक खान पान है, आदतें उन्हें पहचानो है और भोजन में विविधता लाना है। अगर आप भोजन में विविधता लाओगा तो निश्चित रूप आप स्वस्थ रहेंगा। और क्यों भी गयो है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप अन्न खाओगा वैसा अपनो मन बनेगा सा। तो देखो अन्न रो विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्न रो अनादर नहीं करना है। कई बार आप देखा कि खाना समारोह में जावा देखा बटे अन्न जूठो छोड़ दे, तो देखो वो भी आपने नहीं करना है। तो जत्रो थाली में चाहे जत्रो आपने भावे वती चीज आपने लेनी है, तो अन्य तरीकों में देखो कि आप स्वस्थ रहेंगा। और देखो स्वस्थ रहेंगा तो मन में भी आनंदमय होगा, तो आनंद मेरी कड़ी में देखो एक राजस्थानी लोग थोड़ा सा।
1: हाँ सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो किसान भाई देखो, राजस्थानी लोग थोड़ी, और देखो कार्यक्रम में बात करांगा कि गर्मी वाले खेतों में गहरी जुताई क्यों जरूरी है। आप ही देखा कि कृषि विज्ञानी दृष्टियों देखो कि गर्मी में जो गहरी जुताई फायदेमंद मानी जाए। आमतौर पर आप ही देखा कि रबी री फसल काटवा बाद मानसून आवा रहे पहला यानी मई और जून महीना रहे बाद में क्यों जावे, अंडा बहुत सारा फायदा है।
3: हाँ सर, देखो अणियों कही हुए कि खरपतवार नियंत्रण हुई जावे, गहरी जुताई करवाऊ खरपतवार री जड़ा जो है भी उखड़ने ऊपर आई जावे, और तेज धूप रे कारण उनारी जड़ा सूख जावे और भी नष्ट हुई जावे। जणियों कही अगली फसल में खरपतवारो प्रकोप बहुत ही कम हुई जावे है।
2: बिल्कुल साहब, जटे कीट और रोगा रे नाश की बात करना तो मिट्टी रे अंदर कई प्रकार हानिकारक कीट वे जिस तरह अंडा भी गया है, लार्वा भी गया है, प्यूपा भी गया, ये छिपिया तकार है। जुतरे समय के ये मिट्टी रे ऊपरी सतह पे जावे, जड़ में आप ही देखा कि तेज धूप पड़े वणु वे मर जावे। कतरी बार आप ही देखा कि पक्षी वणा ने खाई ने खत्म करते, तो अण में आप ही देखा कि जो मिट्टी जनित रोग है वणु में भी कमी आवे सा।
3: हाँ सा देखो, और गर्मिया रे महीने अगर आप गहरी जुताई कर ला तो जल संचयन क्षमता में भी बढ़ोतरी हुए, क्योंकि मिट्टी जो है वह सख्त व्यवहार के कारण बारिश और पानी जो है वो जमीन रे अंदर नहीं जा सके और वे ही जावे। तो आने वास्ते अगर आप गहरी जुताई कर ले वहाँ तो मिट्टी भुरभुरी भी जावे और वन में छेद भी जावे। तो जणियों कही वेगा मानसून री यदि पहली बारिश वेगा तो पानी जो है वो जमीन री गहराई तक पहुँची जाएगा। तो वणियों कही वेगा मिट्टी में बहुत लंबा समय तक नमी वणी थकी रही जाएगा।
2: बिल्कुल किसान भाई, और देखो कि गहरी जुताइयों कही कि मिट्टी जो उर्वरता और वायु संचार में बढ़ोतरी पे मिट्टी री आप देखा कि जो निचली परिता में दबा तक पोषक तत्व है जुताई कारण ऊपर ही जावे, जो पौधारी जड़ा और आसानी में उपलब्ध हुई जावे। अण में आप ही देखा कि मिट्टी रे हवा में संचार बढ़े, जणू लाभदायक आप ही देखा कि जे भी सूक्ष्म जीव है वणारी गतिविधि भी तेज हुई जावे।
3: हाँ सर, देखो भाई गहरी जुताई करवो मिट्टी जी कठोर परत जो वे वह टूट जावे, वणियों कही वे अगली फसल जो वे मंडी जड़ा जमीन में गहराई तक जा सके और पौधा जो है भी बहुत मजबूती खड़ा रह सके है।
2: बिल्कुल सर, सावधानी में ध्यान रखना है कि जुताई रे बाद खेत ने समतल लेवल पे नहीं करना चाहे, बल्कि मिट्टी रे ढेला रे रूप में छोड़ देना।

जावे ताकि हवा और धूप अधिकतम मिल सकें। और ढालू जमीन या भी जुताई देखा हमेशा ढाल रहे विपरीत यानी समकोण पे करनी चाहिए ताकि मिट्टी रो कटाव भी नहीं वेवे। तो देखो किसान भाई, या तो आप ही बात की थी ग्रीष्मकालीन में किस सर गहरी जुताई करा, और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ाओ होना राजस्थानी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो रामा भाई देखो अतरो बढ़िया सो गीत आपकी हुनायो सा।
3: हाँ बिल्कुल सा।
2: और अब देखो किसान भाइयों के लिए आपकी जानकारी लाया हाँ उर्वरकारो संतुलित प्रयोग करने तरीका करना है सा।
3: बिल्कुल सा, जो उर्वरक की बात करें तो देखो कि फसल ने ज्यादा नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण की आवश्यकता है। जन में आप देखा कि उर्वरक रो असंतुलित और अनुमान आधार पर प्रयोग आप देखा कि पौधा रे जो उत्पादन है गुणवत्ता है और मिट्टी अना तीना ने नुकसान पहुंचावे। तो शुरुआती में आपने देखो कि मृदा रो परीक्षण करना है और मिट्टी रे परीक्षण हो आप जांच पावा कि कसा पोषक तत्व की कमी है कतरी मात्रा में देखो कि जो पोषक तत्व है वे देना है। जनडो उर्वरक की क्षमता रो प्रयोग बढ़े तो देखो पीएच मान है वनडे आधार पर आप देखा कि जो पोषक तत्व है वना उपयोग करना है सही समय और सही तिथि रो भी विशेष रूप में आपने ध्यान रखना है सा।
2: हाँ सा भाई देखो नाइट्रोजन रो विभाजित उपयोग आपने करना चाहे तो वावणी रे टाइम पे एक तिहाई भाग आपने नाइट्रोजन देना चाहे पछे एक तिहाई भाग बढ़वार वे यदि 30-35 दिन बाद वही टाइम पे देना है और एक तिहाई भाग यदि बालिया निकलवा लाग जाए वही टाइम पे आपने देनो चाहे सा।
3: बिल्कुल सा, और फास्फोरस को भी सही उपयोग करना है। जन में आप देखा कि जड़ारे अड़े बड़े देनो है खेत में फैला हुआ है खड़ी फैसल देवा में देखो नुकसान भी सके। एकीकृत पोषण प्रबंधन में

0: बात करां तो आप ही देखा कि गोबर की खाद भी गी है, हरी खाद भी गी है, फसल अवशेष भी गया है, तो अंडो विशेष रूप आपने प्रयोग करना है क्योंकि वो मिट्टी रे जो कार्बनिक पदार्थ है विने बढ़ावे है सा।
1: हाँ सा देखो अंडे अलावा आपने सूक्ष्म पोषक तत्व है वनारी मात्रा रू भी पूरा ध्यान राखनो पड़े है सा। देखो अण में भी देखो कम मात्रा में सही लेकिन फसल रे विकास रे लिए बहुत ही जरूरी है सा। जिस तरह की जिंक री बात करा तो जिंक री कमी हो पत्तियां जो है भी पीली वी जावे और वनारी बढ़वार रुक जावे है।
0: बिल्कुल सा। और देखो बोरान रो भी प्रयोग कर सका क्योंकि कमी में देखो कि फूल जड़वा लाग जावे, फूलन कम भी जावे, आयरन में आप देखा कि कम में पत्तियां पीली भी जावे, सल्फर अगर प्रयोग नहीं हुए तो कम प्रोटीन में आप देखा कि प्रोटीन भी कम हुए, उत्पादन भी घटे। तो विशेष रूप में आपने ध्यान रखना है कि जरूरत तो ज़्यादा उर्वरक नहीं डालना है, उत्पादन में वृद्धि वृद्धि नहीं हुए। और आप देखा कि मिट्टी जो परीक्षण है वनडे विशेष रूप पूर्वक तय करना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस को संतुलित प्रयोग करना है, फास्फोरस जड़ा रहे अड़े भड़े देना है। तो अगर ये सब चीज़ें आप अपनाऊंगा तो निश्चित रूप में अपनी जो उपज है उनकी अच्छी पैदावार आप ही ले सकेंगे। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और देखो किसान भाइयों मनोरंजन भी करावा और सुनावा राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सर।

अभी किसान भाइयों ने सुना अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला नगमा फिल्म करीब से, आवाज कुमार शानू की है।

कामचोर। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला नगमा फिल्म परिणीता से। आवाज सोनू निगम के साथ श्रेया घोषाल की है।

युगल गीत था फिल्म सुई धागा से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। फिल्म का नाम कलंक। आवाज अरिजीत सिंह की है।

अनुष्का भोसले और सुरेश वाडेकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म परिंदा में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में अगली आवाज़, पेपोन और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम है शिकारा।

इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद सुनेंगे आप अंग्रेजी में समाचार न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में

91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In Bhopal, IMD forecasts heatwave conditions to abate over many parts of northwest India from today. National capital region experienced rain and thunderstorm this evening. And two Indian wrestlers advanced to the semi-finals of the Asian Under-17 Wrestling Championships in Vietnam. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ये पहली गजल चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज़ में।

एक ऐसी ही जिंदगी को जीकर आज खामोश हो गए हैं बशीर बत्र साहब। जी हाँ, आज शब्दों का एक जादूगर खामोश हो गया। बशीर बत्र साहब ने अपनी शायरी से मोहब्बत, दर्द और इंसानियत को नई आवाज़ दी। उनके अल्फाज हमेशा दिलों में गूंजते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्हीं की लिखी गजल जगजीत सिंह की आवाज में आइए सुनते हैं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

कैसे कैसे हादसे सहते रहे। जगजीत सिंह की गाइस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली सौगात फिल्म कल आज और कल से हमने ये गीत लिया है। माफ कीजिएगा, फिल्म का नाम है प्रेम रूप।

सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला नगमा। फिल्म का नाम है तेरी कसम। आवाज़ लता मंगेशकर के साथ इस बार अमित कुमार की है।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में अगली सौगात। फिल्म का नाम कल, आज और कल। आवाज किशोर कुमार की है।

किशोर कुमार के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रांतीय मासिक नाटक श्रृंखला की कड़ी में नाटक मेवाड़ की बेटी। प्रस्तुति आकाशवाणी उदयपुर की है, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं कुछ ही पलों में।

0: तक निर्णय निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राजपूत जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आपको लेना है, और वो भी सुबह से पहले। ध्यान रहे, आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी हैं। मेवाड़ की बेटी, मेवाड़ की बेटी। आलेख श्री कृष्ण कुमार टिक्कू, निर्देशक श्री मदन शर्मा। तो सुनिए नाटक मेवाड़ की बेटी।
1: किसका चित्र इतना सुंदर हो, वो स्वयं भला कितना सुंदर होगा।
2: माँ दुष्ट कंकी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
1: मैं तो समझी थी कि माँ आ गई है ना, लेकिन माँ आ भी जाए तो क्या है, अपने मंगेतर का ही तो चित्र देख रही थी महारानी जी। और फिर अब तो विवाह में भी 4 ही दिन बचे हैं।
2: लेकिन हंसा, तू अभी से मुझे क्यों महारानी कह रही है?
1: क्यों ना कहूँ? याद है जब जयपुर के राज पुरोहित ने आपकी गोद भरी थी तब क्या कहा था?
2: क्यों कहा था?
1: आयुष्मान भव, राजकुमारी जी आपका विवाह जयपुर के श्रेष्ठ महाराज मानसिंह जी के साथ 2 माह बाद होगा, किंतु आप इसी क्षण से स्वयं को जयपुर की महारानी समझे। और राणा जी अब ये मेवाड़ की राजकुमारी नहीं, जयपुर की महारानी के रूप में आपके पास हमारी अमानत है। 2 माह बाद हम जयपुर नरेश की बारात लेकर आपसे अपनी अमानत लेने आएंगे।
2: अरे वाह हंसा, तुझे तो कोई अभिनेत्री होना चाहिए था।
1: हाँ अभिनेत्री ही बन जाऊंगी। और जयपुर वाले अपनी महारानी को ले जाएंगे तो हंसा का क्या काम रह जाएगा यहाँ पर?
2: हंसा
1: हाँ अभिनय करके ही पेट पालना पड़ेगा मुझे अब।
2: तू कहे तो तेरे लिए भी कोई जयपुर वाला दूल्हा ही ढूंढ दूँ, फिर सदा ही मेरे साथ रहना।
1: क्यों जी, दूल्हा मिल जाएगा तो फिर हम आपके साथ क्यों रहेंगे भला? हम अपने दूल्हे के साथ नहीं रहेंगे क्या?

0: हम हाजिर हो सकते हैं महारानी जी?
1: भला मेवाड़ नरेश को भी अपने महलों में आने के लिए किसी की आज्ञा लेनी पड़ती है?
0: मेवाड़ नरेश तो हम हैं ही, लेकिन अपनी रानी के महलों में तो हम सिर्फ एक प्रेमी पुजारी ही हैं। अब देवी की आज्ञा के बिना भला पुजारी कैसे अंदर आ सकता है?
1: लगता है आज आप ठिठोली करने पधारे हैं यहाँ। किंतु हमें अभी संध्या पूजन को जाना है भगवान एकलिंगनाथ के मंदिर में।
0: वो तो हम आपके हाथ में पूजा का थाल देखकर ही समझ गए थे रानी जी। हम तो ये कहने आए थे कि आज हमने कृष्णा को देखा तो तंग रह गए। आपने तो हल्दी चढ़ा चढ़ा कर हमारी बेटी को साक्षात वसंत ऋतु सा कर दिया है।
1: सच कह रहे हैं आप, कुंदन सी धमकने लगी है हमारी कृष्णा। जयपुर नरेश उसे देखेंगे तो स्वयं अपने भाग्य पर आश्चर्य करेंगे। राणा जी, दिन में 4 बार उसकी नजर उतारती हूँ मैं।
0: अच्छा, एक बात कहें हम आपसे।
1: कहिए ना।

0: कृष्णा को देखकर हमें वो दिन याद आ गया जब हमने पहली बार अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया था। बिल्कुल आप पर गई है आपकी बेटी।
1: चोरी कर दी आपने ठिठोली।
0: अच्छा नहीं करते ठिठोली।
2: हुजूर महामंत्री जी पधारे हैं, कहलवाया है इसी समय हुजूर के दर्शन करना आवश्यक है।
1: महामंत्री जी इस समय?
0: विवाह की तैयारी में ही कुछ बात करनी होगी, अब चार ही तो दिन शेष बचे हैं, कल से तो अतिथियों का आना भी शुरू हो जाएगा। सेवक
2: आज्ञा महाराज।
0: तुम महामंत्री जी को भीतर भेज दो।
2: जो
0: आप भी कुछ देर यहीं रुक जाइए महारानी जी, संभव है आपसे भी कोई परामर्श लेना हो।
3: मेवाड़ शिरोमणि की जय हो।
0: आइए महामंत्री।
3: प्रणाम स्वीकार करें महारानी जी।
1: आसन ग्रहण कीजिए महामंत्री जी।
3: आप कदाचित मंदिर पधार रही हैं।
1: हाँ किंतु अभी समय है, आप चाहे तो अपनी बात कह सकते हैं।
3: जो आज्ञा राणा जी। मैं
0: क्या बात है अजीत, तुम कुछ घबराए से हो।
3: अन्नदाता बड़ा अशुभ समाचार है।
0: क्या? शीघ्र कहो अजीत, क्या हुआ है?
3: अन्नदाता जयपुर नरेश।
0: क्या हुआ है जयपुर नरेश को?
3: अन्नदाता जयपुर नरेश नहीं रहे।
1: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये तुम क्या कह रहे हो अजीत? क्या मान सिंह जी?
3: अन्नदाता अभी अभी जयपुर से दूत आया है, कुछ दिनों से जयपुर नरेश बीमार थे और कल रात अचानक ही।
1: हे भगवान ये क्या अनर्थ कर डाला तूने, ये दुख मेरी कृष्णा कैसे सह पाएगी? अब क्या होगा?
0: स्वयं को संभालिए रानी जी।
1: कैसे संभालो, घर में हल्दी चढ़ी बेटी बैठी, चार दिन बाद विवाह के लग्न है, ऐसे समय में ये बच पाते? मैं
0: ये समय रोने का नहीं महारानी, ये समय है विचार करने का। सेवक ये नगाड़े और शहनाइयां बंद करवा दो, महलों पर सजावट की सारी रोशनियां बुझवा दो, जनाने महलों में कहलवा दो कि ये गीत नृत्य सब बंद कर दिए जाए। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया अजीत।
3: आपका दुख मैं ही समझ रहा हूं राणा जी, ये आप ही का कलेजा है जो ये वज्रपात झेल कर भी आप अपना धैर्य बनाए हुए हैं।
0: और हम कर भी क्या सकते हैं?
1: किंतु राणा जी एक और कठिन समस्या है।
0: एक नहीं, अब तो समस्याएं ही समस्याएं हैं हमारे सामने।
1: आप समझे नहीं, बेटी को हल्दी चढ़ चुकी है, अब उसे घर में बिठाए नहीं रखा जा सकता। विवाह का जो मुहूर्त है उस पर उसका विवाह करना ही होगा।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: आपके कुल की यही रीत है राणा जी, एक बार हल्दी चढ़ जाने पर लड़की का विवाह निश्चित मुहूर्त पर करना होता है। हल्दी चढ़ी बेटी पिता के घर नहीं रह सकती।
0: किंतु रानी जी लग्न में तो केवल चार दिन शेष है, भला इतने कम समय में हम राजकुमारी के लिए योग्य वर कहां से लाएंगे?
3: अन्नदाता आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं।
0: आप भी कुछ सलाह दीजिए मंत्री जी, हमारी तो समझ में नहीं आता कि अब क्या करें।
3: अन्नदाता राजकुमारी जी के लिए जयपुर के अलावा जोधपुर नरेश का भी तो प्रस्ताव आया था।
0: हाँ राजा मकरंद सिंह
3: जी।
0: हाँ उनका भी प्रस्ताव आया था, बल्कि वे तो इस संबंध के लिए बहुत उत्सुक भी थे।
3: और जयपुर नरेश का प्रस्ताव मिलने के बाद आपने अभी तक जोधपुर नरेश

0: हाँ या नहीं का कोई भी जवाब नहीं दिया।
1: हाँ
0: अन्नदाता, इस समय वही आपकी समस्या का समाधान है।
1: आपका मतलब है कि?
0: हाँ मेवाड़ शिरोमणि, जयपुर के बाद जोधपुर से अच्छा कोई संबंध राजकुमारी और मेवाड़ के लिए नहीं हो सकता।
1: तुम ठीक कहते हो अजीत सिंह। आपका क्या विचार है महारानी जी?
2: हाँ, यही उचित होगा। आपने तो हमें उबार लिया मंत्री जी।
1: महामंत्री जी, हमारा पत्र लेकर दूत को जोधपुर रवाना करो। हम राजा मकरंद सिंह को बारात लेकर निश्चित मुहूर्त पर पहुंचने का निमंत्रण भेजेंगे। राजाओं की तैयारी में समय नहीं लगता। दूत से कहना रातों रात हमारा पत्र जोधपुर नरेश तक पहुंचाए और उनका जवाब लेकर कल तक यहां वापस लौटे।
0: जो आज्ञा अन्नदाता, आप पत्र लिखिए, मैं सब प्रबंध करके लौटता हूं।

0: मंत्री जी।
1: जी महाराज।
0: आश्चर्य तो होगा जोधपुर नरेश को ये देखकर कि हम स्वयं नगर की सीमा पर उनकी बारात के स्वागत को आए हैं।
1: ऐसा करके आपने उनका सम्मान बढ़ाया है महाराज, वो निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे।
0: लगता है बारात आ गई है अजी।
1: जी हाँ महाराज, वो उधर घुड़सवार नजर आने लगे हैं महाराज।
0: स्वागत की तैयारी तो सब हो गई है ना?
1: आप निश्चिंत रहिए अन्नदाता।
0: ये तो बारात नहीं कोई सेना नजर आती है अजीत। भला जोधपुर नरेश
1: ये मुझे भ्रम हो रहा है या
0: क्यों? क्या हुआ अजीत?
1: इन सैनिकों के सिर पर जोधपुरी साफे भी नहीं है राणा जी। ये तो
0: हमने ध्यान ही नहीं दिया था अजीत।
1: जी महाराज,
0: ये साफे तो जयपुर रियासत की पहचान है।
1: ये निश्चय ही जयपुर रियासत की सेना है राणा जी।
0: जयपुर की सेना? लेकिन क्यों?
1: वो देखिए एक हाथी पर जयपुर राजवंश का ध्वज भी लगा है राणा जी। इसका मतलब है कि स्वर्गीय मान सिंह जी के छोटे भाई और अब जयपुर नरेश राजा मुकुंद सिंह जी स्वयं भी सेना के साथ तैयार रहे हैं।
0: लेकिन उन्हें तो हमने निमंत्रण भी नहीं भेजा था।
1: कुछ घुड़सवार इधर भी आ रहे हैं राणा जी, और सबसे आगे स्वयं जयपुर के दीवान जी है।
0: जाने क्या इच्छा है भगवान एकलिंग नाथ की। आप आगे जाकर दीवान जी का स्वागत कीजिए और उन्हें यहीं हमारे खेमे में ले आइए।
1: जो आज्ञा राणा जी।
0: और जब भी जोधपुर वालों की बारात पहुंचे आप उनका स्वागत करें, उनके यहीं विश्राम का प्रबंध करें और हमें तुरंत सूचना दें।
1: जो आज्ञा अन्नदाता।
2: जयपुर के दीवान का प्रणाम स्वीकार करें मेवाड़ नरेश।
0: पधारिए, मेवाड़ में आपका स्वागत है।
2: मैं जयपुर महाराज का एक आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ राणा जी।
0: आपको जो भी कहना हो शीघ्र कहिए दीवान जी। जोधपुर नरेश की बारात भी किसी भी क्षण आ सकती है।
2: उस बारात को वापस लौटा दीजिए मेवाड़ नरेश।
0: क्या क्या कह रहे हैं आप?
2: जयपुर नरेश का यही संदेश है कि आप जोधपुर वालों की बारात वापस लौटा दीजिए।
0: बारात वापस लौटा दें? हमसे यह कहने का साहस कैसे हुआ आपका? आपके राजा को हमारे परिवार के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है?
2: ये अधिकार आप ही ने जयपुर नरेश को दिया है हुकुम।
0: हमने अधिकार दिया है? हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं दीवान जी।
2: आप अगर क्रोध छोड़कर शांति से मेरी बात सुनें तो सब समझ जाएंगे। फिर आप स्वयं ही फैसला कीजिएगा कि आपको जोधपुर की बारात लौटानी चाहिए या नहीं।
0: लेकिन आप कुछ कहिए तो सही।
2: अर्ज करता हूं, राजकुमारी कृष्णा का संबंध आपने जयपुर नरेश मानसिंह जी से किया। हमारे राजपुरोहित ने स्वयं आकर उनकी गोद भरी और उन्हें जयपुर की महारानी घोषित किया। ठीक है ना राणा जी?

0: है, ये सब ठीक है, लेकिन मानसिंह जी के स्वर्गवास के बाद इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
1: अर्थ क्यों नहीं रह जाता राणा जी? रियासतों के विवाह संबंध व्यक्तियों के बीच नहीं, दो राजघरानों के बीच होते हैं, दो रियासतों के बीच होते हैं। राजा मानसिंह के निधन से जयपुर की राजगद्दी सूनी नहीं हो गई। आज राजा मुकुंद सिंह जयपुर नरेश हैं और अपने राजपुरोहित के वचनों के अनुसार निश्चित लग्न मुहूर्त पर जयपुर की महारानी को, जो आपके पास हमारी अमानत है, लेने आए हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं राणा जी?
0: लेकिन हमने जो जोधपुर नरेश को निमंत्रण देकर बुलावा भेजा है,
1: क्षमा चाहता हूं, ये आपकी गलती थी। हम भी जानते हैं कि हल्दी चढ़ी राजपूत कन्या पिता के घर नहीं रह सकती। हम भी क्षत्रिय हैं, इसीलिए राजा मान सिंह की मृत्यु के शोक के बावजूद सही मुहूर्त पर बारात लेकर आए हैं।
0: हे कलिंगनाथ, अब क्या होगा?
1: जयपुर नरेश की बारात खाली हाथ नहीं लौटेगी। हमारी महारानी को हमारे सामने आप किसी और को सौंपें, इससे पहले मेवाड़ की धरती को अपने ही पुत्रों के खून से नहाना होगा। आपकी बेटी जयपुर की इज्जत है और इसकी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा, चाहे वह किसी का भी हो। मैं अब आज्ञा चाहूंगा मेवाड़ नरेश। लग्न का समय कल रात का है, तब तक हमारी सेना आपके नगर की सीमा से बाहर यहीं रहेगी। आशा है आप मेरे निवेदन पर विचार कर कल सुबह तक हमें अपना जवाब भिजवा देंगे। जय भवानी।
2: जोधपुर की बारात आ गई है महाराज।
3: जोधपुर की बारात आ गई है?
2: हाँ हाँ हाँ।
3: सुनो अजीत।
2: जी महाराज।
3: तुम बारात के यही ठहरने का प्रबंध करो, कह दो नगर प्रवेश का कल सुबह से पहले अच्छा मुहूर्त नहीं है, हम महलों में जा रहे हैं, तुम वहीं आओ।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: अब क्या होगा राणा जी? हे प्रभु, ये कैसा संकट आ पड़ा है हम पर। इधर जोधपुर की बारात तैयार खड़ी है, उधर जयपुर की सेना, अब हम क्या करें? आप ही कुछ कहिए ना मंत्री जी।
1: मैं क्या कहूँ महारानी जी, मैंने तो जोधपुर और जयपुर दोनों ही राजाओं के हाथ जोड़कर अपनी व्यवस्था बताई, पर दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। जोधपुर नरेश कहते हैं कि स्वयं महाराजा ने उन्हें विवाह का निमंत्रण देकर बुलाया, अब उनकी चढ़ी बरात के सामने कोई दूसरा मेवाड़ की राजकुमारी को ब्याह कर ले जाए, इससे पहले उनका हर सिपाही अपना सिर कटा देगा। वे यहां से लौटेंगे तो राजकुमारी को लेकर, अन्यथा लाशों का ढेर लग जाएगा। यही जिद जयपुर नरेश की भी है।
0: लेकिन मैं अपनी एक बेटी को दो बारातों में कैसे बांटूं? आप कुछ क्यों नहीं बोलते राणा जी? कल किसे और क्या जवाब देंगे आप?
1: जवाब? हाँ, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सेवक,
2: हाजिर हूं अन्नदाता।
1: राजकुमारी को संदेश भेजो कि हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं।
2: जो आ गया हूं।
0: आप कृष्णा को बुलवा रहे हैं?
1: हाँ रानी जी, अब हमें क्या करना है इसका फैसला कृष्णा ही करेगी।
0: दाता हुकुम को प्रणाम।
1: आओ बेटी।
0: यहाँ आओ बेटी। अरे माता जी और मंत्री काका भी रही हैं। खम्मा घर
1: जीती रही है राजकुमारी जी।
0: मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी?
1: बेटी, आज तुम्हें आज्ञा देने नहीं, एक गंभीर समस्या पर तुम्हारी सलाह लेने को बुलाया है।

0: ये केवल हमारे परिवार ही नहीं, पूरे मेवाड़ और पूरी राजपूत जाति के लिए संकट की घड़ी है। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो और फिर बताओ कि हमें क्या करना है।
1: जी पिताजी।
0: सुनो बेटी, हमने जब जयपुर से आपके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था तब ये सोचा था कि आपको तो अच्छा वर और घर मिलेगा ही, साथ ही मेवाड़ पर छाए संकट के बादल भी छट जाएंगे।
1: मेवाड़ पर संकट?
0: हाँ बेटी, मुगलों से लड़ते लड़ते मेवाड़ अंदर ही अंदर इतना जर्जर हो चुका है कि हमारी पड़ोसी रियासतें भी हम पर गिद्ध दृष्टि डालने लगी थी। हमारी बची खुची सेना बहुत दिनों तक मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, किंतु यदि जयपुर जैसी ताकतवर रियासत से हमारे संबंध हो जाते तो फिर किसी का हमारी ओर आंख उठाने का साहस भी नहीं होता।
1: ये तो आपने ठीक ही विचार किया पिताजी।
0: पर ऐसा हुआ नहीं। विवाह के 4 दिन पूर्व मान सिंह जी का स्वर्गवास हो गया।
1: क्या?
0: हाँ। और कुल की रीत निभाने के लिए हमें आपके विवाह का निमंत्रण जोधपुर नरेश को भिजवाना पड़ा।

0: अब स्थिति यह है कि मेवाड़ की राजकुमारी एक है और उनसे ब्याहने को दो बाराते दरवाजे पर खड़ी हैं। कल तुम्हारा लग्न है और कल सुबह हमें उनमें से एक को बारात नगर में लाने को आमंत्रित करना है। हम चाहे जयपुर वालों को न्योते या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी। तीनों ही रियासतों के सैकड़ों राजपूतों की लाशों का ढेर लग जाएगा। यहां से तुम्हारी डोली जो भी ले जाएगा उसे अपनी ही कौम के खून की भरी दलदल से होकर गुजरना पड़ेगा। हजारों राजपूत बालाएं विधवा हो जाएंगी तुम्हारी मांग के सिंदूर के लिए, असंख्य बच्चे अनाथ हो जाएंगे तुम्हारा घर बसाने के लिए, और मेवाड़ का क्या होगा फिर?
1: नहीं नहीं पिताजी नहीं, यदि मेरे विवाह मंडप में मंगल गीतों की जगह विधवाओं का क्रंदन गूंजे, यदि मेरी डोली हजारों वीर राजपूतों की लाशों को लांग कर गुजरे तो बेकार है इसी विवाह पर। सिर्फ मेरे कारण इतना विनाश? नहीं नहीं पिताजी नहीं नहीं नहीं नहीं, आप तुम्हें राजाओं से कह दीजिए कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी।
0: बेटी ये भी तो संभव नहीं है। अब हल्दी चढ़ी कन्या घर में बैठी है और दरवाजे पर बारात खड़ी हो तो विवाह नहीं चलेगा। हम कहे भी तुम्हें नहीं मानेंगे।
1: फिर क्या निर्णय लेंगे आप?
0: निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राजपूत जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आपको लेना है। ध्यान रहे आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी है, मेवाड़ की बेटी।

0: वे इतनी चिंतित क्यों हो राजकुमारी?
1: हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, तू मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे हंसा। अच्छा घंटे भर बाद आना।
0: क्यों आ गया?
2: हम चाहे जयपुर वालों को मिलते ही या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी।
1: कारण सैकड़ों विधवाएं और सैकड़ों अनाथ। मेरी मां में सिंदूर नहीं, हजारों हजारों राजपूतों का खून भरा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं क्या कहना चाह रहे थे पिताजी? हाँ, मैं मुझे ही लेना होगा।
0: राणा जी सुबह होने ही वाली है।
3: हाँ दाता, कुछ न कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा आपको।
4: निर्णय तो राजकुमारी ने ले ही लिया होगा।
0: क्या हुआ बताना, क्या हुआ?
1: राजकुमारी
0: क्या हुआ राजकुमारी को?
1: राजकुमारी ने बीच पीकर प्राण दे दिए।
0: नहीं,
3: प्रभु
1: मेरी बेटी डोली की जगह कथा पे चढ़ेगी। नहीं आप खामोश खड़े हैं, कुछ तो बोलिए।
4: रोना बंद कीजिए रानी जी, आपकी बेटी ने, मेवाड़ की बेटी ने अपना बलिदान देकर राजपूतों के गौरवमय इतिहास को गंगा की पवित्रता दी है।
1: मेरी बेटी,
4: धैर्य रखिए रानी। अजीत सिंह आप क्या मेवाड़ रहे, आप अभी जाकर जयपुर और जोधपुर नरेशों को स्वयं ये कहिए कि हमारी बेटी के विवाह मंडप में तो हम उनमें से किसी को भी नहीं बुला सकते अब, किंतु हमारी बेटी के अंतिम संस्कार में वे दोनों ही आमंत्रित हैं। जाइए अब मेवाड़ की धरती खून से नहीं नहाएगी।

0: मेवाड़ की बेटी। अभी आप श्री कृष्ण कुमार टिक्कू का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे श्री मदन शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे श्री दीपक जोशी, श्रीमती पूनम भू, श्री रमेश सनाढ़े, श्री अतुल्य कीर्ति व्यास, श्री राजेश चड्ढा, कुमारी करुणा कुमावत और श्रीमती ममता सुखवाल।
1: इसका अभी आपने सुना मेवाड़ की बेटी मासिक नाटक, जिसे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली सौगात फिल्म

कब्बन मिर्जा को अभी आप सुन रहे थे फिल्म रजिया सुल्तान में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली सौगात। फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चंबल की कसम में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली सौगात। फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो। आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की है।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की आखिरी सौगात। फिल्म का नाम है उत्सव। आवाज लता मंगेशकर के साथ आशा भोसले की है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म उत्सव में। इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। दोनों ही बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने

0: एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।